तो थोड़ा जरा कान खोल के एकदम सड़ाक से इधर उधर ध्यान न रखते, चाय न पीते हुए सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे।

0: ने उसके सामने एक शर्त रख ली कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज जो तुम्हें खाने का सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा।
1: अच्छा।
0: उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा।
1: अच्छा।
0: महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो।
1: वो खाना से बहुत प्यार करता था।
0: वो खाना से बहुत प्यार करेला। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई।
1: हाँ।
0: पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ।
1: हाँ।
0: तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा।
1: हाँ।
0: जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे।
2: पीताम्बर बोले तो
0: पीला वस्त्र।
2: पीला वस्त्र, पीला वस्त्र ऐसा क्यों पहनते राजेंद्र जी?
0: पीताम्बर पहनते, अलग अलग प्रकार के कुछ लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं। जब वो सफेद वस्त्र पहनते हैं जब आप तैयारी कर रहे हो सन्यास के लिए, जब आप सन्यासी हो गए तो आप भगवा वस्त्र भी पहनते हैं, कुछ लोग गेरुआ पहनते हैं, कुछ पीताम्बर पहनते हैं।
2: हमारे जैसे सूरीनाम में होते थे ना शांता जी, तो कोई भी जैसे कि जनेऊ संस्कार है और विवाह संस्कार हो गया राजेंद्र जी, तो पहले कातून खरीदते थे, कातून का वस्त्र।
0: हाँ।
2: तो उन्हें खूब, और एक दिन होता था शादी से मेरे ख्याल से भतवान या तिलक से पहले
1: पियरी
2: की पियरी होता था,
1: हरदी में उसके
2: हरदी में उसे डिबोल डिबोल करके और एकदम पीला कर दिया जाता था,
0: वही पीताम्बर हो गया।
2: वही पीताम्बर।
0: हाँ।
2: तो यानी कि शुभ कार्यों करने के लिए पीला वस्त्र और पहना जाता कि ना
0: जी?
2: ऐसा
0: ऐसा।
2: तो आगे बढ़िए।
0: 15 दिन बाद अगली एकादशी को, और जब वो भगवान को बुलाने लग गया तो उसने बुलाने पर पीताम्बर धारण किए और चतुर्भुज रूप में पहुंच गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भगवान प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करने पर करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चले गया। फिर 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई। एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान चाहिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए, तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वही उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गई। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ।
2: ऐसा
0: ऐसा,
2: यानी कि पहले अपने आप को शुद्ध करो।
0: हाँ।
2: अपना मन को शुद्ध करो।
0: हाँ।
2: तो फिर उसके बाद में ये जो हमारे एकादशी व्रत, कोई भी व्रत है, व्रत करे।
0: हाँ।
2: बोले जब मन शुद्ध ना है तो कोई फायदा ना,
0: कोई फायदा ना। हाँ।
2: तो शांता जी, इसमें आप क्या कहने वाले हैं?
1: हम तो एकदम चकित, एकदम स्थिर हो गए, एकदम चुप हो गए, क्योंकि हम इसमें ध्यान में चले गए कि हम ऐसे तो बहुत करते हैं और कहते भी, हम ये किया, हमने वो किया,
2: हाँ, लोग ऐसा कहते हैं कि हमने ये किया, मैंने वो किया,

0: कुछ
1: जैसे अभी राजेंद्र जी ये कहानी छोटे रूप में कहानी में इसमें बहुत गहरा संदेश है कि करे के और दिखावे में दो फर्क होता है।
0: सही बात। हाँ। राजेंद्र जी क्यों ना पिटाड़े की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि शांता जी क्या लेकर आए।
2: हाँ जरूर
3: सरकार, छूत अछूत का कोई सवाल नहीं, भगवान सब में मौजूद है।

0: जो मिलना है भगवान से,
1: तो मिल पहले इंसान से,
0: तो पहले इंसान से मिल। तो शांता जी बताइए, आप आपने तो इतना सुना है, सब कुछ देखा है, तो इंसान कितना प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, क्या आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगी?
1: जी, जैसे आपने कहा राजेंद्र जी, तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा हूँ और पढ़ी हूँ और सुनी भी हूँ सत्संग में, तो ऐसे सुनी है कि तीन प्रकार के इंसान होते हैं, कि जो बोलते हैं और नहीं करते, और जो करते हैं वो नहीं बोलते, और एक प्रकार के जो करते भी है और बोलते भी है, ऐसे तीन प्रकार के हैं।
0: तो बहुत बढ़िया आपने जो संदेश दिया है तीन प्रकार के लोगों का। संजय जी, आप इस संदेश के बारे में कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं?
2: नहीं राजेंद्र जी, बढ़ाना नहीं चाहता, पर यहाँ पर मेरे पास आ गया एक व्हाट्सएप ब्रेक।
0: हाँ
2: शांता जी, आप बस यही कह रहे थे और व्हाट्सएप ब्रेक आ गया। आपको पता गिलहरी क्या है?
0: हाँ,
1: गिलहरी
2: हाँ,
1: एक
0: गिलहरी वो होता है ना,
1: जानवर घर
0: नहीं, नहीं जानवर नहीं, वो ऐसे चलती
2: और बड़ी बनमास होता है।
0: हाँ, वही वही वही, जिसके ऊपर का
2: हाँ,
0: कलर।
2: मैं एक बार इंडिया में बैठा था पीपल के पेड़ के नीचे,
0: हाँ, वही रही,
2: हाँ, बस वो मेरे ऊपर कूद पड़ा।
0: हाँ, हाँ, वही वही,
2: मैं डर गया, पर गिलहरी
1: उसका लंबा पूंछ होता।
2: हाँ, हाँ, हाँ,
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो ऐसा हुआ राजेंद्र जी कि यहाँ पर किसी ने एक मैसेज भेज दिया है।
1: अच्छा,
2: दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरी के देन है, वे खुराक के लिए बीच जमीन में छुपा देती है और जगह भूल जाती है। इसी तरह से आप भी अच्छे कर्मों करें और भूल जाइए, समय आने पर फल जरूर देंगे। और इसी प्रकार से जैसे कि शांता जी अभी संदेश सुनाए, तो हम अपना कार्य करते चले, अपना अच्छा कर्मों करते चले और फल का इच्छा ना करें ना, क्योंकि समय आने पे जरूर उसका फल को प्राप्ति होता है। तो राजेंद्र जी, आज का संदेश जो हम सब एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत जो ये कार्तिक मास वाला जो एकादशियों में सबसे बड़ा कहलाते हैं, उस अंतर्गत में और क्या संदेश है?
0: हाँ, उसके अंतर्गत में एक राजा की कहानी है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने ही एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस समय इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी भगवान बोली, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूँ? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा, राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा।
2: ओ राजेंद्र जी, ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, क्योंकि राज्य का अधिकार पूरा सौंपना होगा।
0: हाँ, शर्त ये है।
2: पहले गीत चला देते हैं, एक गीत चला देते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि ये तो बड़ा गंभीर होने वाला है अभी। दोस्तों, हम सब एक सुंदर सा गीत जो शांता जी ने हम सब के लिए खोज खोज करके रखे हुए है, पहले गीत की ओर बढ़ेंगे तो फिर आगे ये वृतांत को हम सब सुनने वाले हैं।

0: भजले हरी हरी। तो शांता जी, आप कुछ प्रश्न पूछने वाले थे।
1: अभी आपने हम यहाँ पर आपके चर्चा की गिलहरी के बारे में ना, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में एक कथा है, तो आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश करें तो बहुत अच्छा था।
0: हाँ, गिलहरी जो
1: रामायण के,
0: हाँ रामायण में गिलहरी के बारे में विषय में एक कथा है कि जब समुद्र में पुल बांधा जा रहा था,
1: हाँ,
0: तो उस समय गिलहरी भी सहायता दे रही थी। गिलहरी क्या करती थी,
1: सेतु बंधन
0: में पानी में जाके भीग जाती थी, और फिर रेत में उसके शरीर में थोड़ा सा रेत चिपकता था, फिर वो जाके किसी पत्थर पे झाड़ लेती थी। तो ऐसे वो निरंतर काम कर रही थी, तो भगवान ने देखा कि बताओ एक छोटी सी गिलहरी भी अपना पूरा सहयोग दे रही है, तो भगवान ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया, और जो गिलहरी के कमर में उंगलियों के निशान है वो भगवान के हाथों के निशान ही हैं। तो इस प्रकार गिलहरी की सहायता करने में लोग कहते हैं कि अरे क्या सहायता करी तूने, पर सहायता दिल से की जाती है, न कि पूर्ण रूप से, जितना जिससे हो सके उतना सहायता कर लेनी चाहिए। तो गिलहरी ने उस प्रकार थोड़ा सा रेत झाड़ी, और उससे क्या होता होगा, लेकिन उसने एक समर्पण का भाव रखा और सहायता करी।
1: कितना अच्छा ना कि छोटी सी गिलहरी, पर वो नहीं सोचा कि, वो ये सोचा कि मैं उतना बड़ी नहीं हूँ,
0: हाँ,
1: कि पत्थर उठा सकूँ, पर थोड़ा से रेत जो मन भाव से वो अपने शरीर से जो लेकर गए, तो भगवान उसको आशीर्वाद दी। बहुत अच्छा।
0: तो आगे की कहानी जो हम बता रहे थे उसके बारे में कि राज्य के अधिकार में सौंपना होगा, आधा राज्य उसके अधिकार में सौंपना होगा, राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा को जब वो सुंदर स्त्री मिली रास्ते में, तो राजा उस पर मोहित हो गए, और राजा ने बोला कि चलो ठीक है तुम राजमहल में चलो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं चल लूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं तुम मेरी बात मानोगे और आधा राज्य उसको देना होगा, और राज्य का पूर्ण अधिकार भी उसी के पास होगा, और जो खाने में बनाएगी वो उनको खाना होगा।
1: अच्छा।
0: राजा उससे उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी, रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाई तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही, तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो, पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया, माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ, तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई, राजन तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा, तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करो। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा, राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। इस प्रकार का वृतांत बहुत ही सुंदर रहा कि अपनी जो भी व्यक्ति अपने धर्म पे और अपने उस पे पूर्ण रूप से रहता है, उसको भगवान भी दर्शन दे देते हैं। क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ा जाए।
2: राजेंद्र जी, गीत की ओर तो बढ़ सकते हैं, पर हमें तो कुछ अवसर, तो हमें और शांता के कुछ कहना है अभी।
0: जरूर जरूर।
2: तो शांता जी यहाँ ऐसा सुनाओ। राजेंद्र जी, अच्छे मित्र और अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार, अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकता है। ऐसा है कि नहीं?
0: ऐसा ही है।
2: तो क्यों ना हम सुंदर से गीत की ओर बढ़ जाते हैं।
0: जरूर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: कहने के तो ये है कि कितने समय से हमें वो सूरीनाम हमारा प्यारा देश उसके ओर भी अभी ध्यान देना
0: कि हो सके तो हमें डालना है।
2: जरूर जरूर जरूर हमारे सूरीनाम कंडाल के ओर भी ध्यान, और जो इस समय सुन रहे हैं तो एक थोड़ा सा झलक उस ओर भी करने वाले हैं हम सब
0: जरूर।

0: शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। राजेंद्र जी, ऐसा लोग कहते हैं और आज का वृतांत जो एकादशी के हम सब लेकर के यहाँ उपस्थित हुए, तो इसमें मूल्य बात सबसे सरलता से लोग कैसे एकादशी व्रत कर सकते हैं?
1: हाँ, सबसे सरलता की बात तो यही है कि जो लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए, और जो नहीं कर सकते वो कम से कम चावल उस दिन नहीं लेना चाहिए, चावल ना खाए।
0: चावल बोले है भात के ना,
1: भात नहीं खाना चाहिए,
0: भात नहीं खाना चाहिए।
1: हाँ,
0: इस दिन को। और राजेंद्र जी,
1: जी
0: ऐसा भी है कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि सुख, राजेंद्र जी रुक गए,
1: हर कोई अंदर ही है, बाहर नहीं।
0: हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख को और ताला किसने लगाया है? तो दोस्तों, ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम इसमें और ला करके अच्छे अच्छे संदेशों रखा जाता है, जिसे हमारे जीवन की ज्योति जो जल रहा है, और ये कार्यक्रम को जो 188 देशों में सुना जा सकता है, लोग इसे सुन करके और कुछ ना कुछ अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने जीवन का ज्योति में और भी प्रकाश डालते हैं। राजेंद्र जी, गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत का बोल क्या है जरा आप, ओ शांता जी कुछ कहने वाले हैं।
1: जरूर शांता। हाँ, जी कुछ
2: जो आपने जो बोल दी तो हम जरूर से कहेंगे। तो आपको जैसे पता है तो ये कार्तिक पूर्णिमा चल रहा है। हम ये कहेंगे कि खुशी हर रात चांद बनकर आए, कि खुशी हर रात चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए। कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी, कभी दूर ना हो आपको चेहरे से हंसी, ये कार्तिक पूर्णिमा ऐसे सौगात लेकर आए।
0: वाह, अच्छा संदेश। फिर एक बार शांता जी, जो हम सबको सुंदर संदेश रूप से अपना शेर शायरी रूप में और हम सबके लिए रख देते हैं। राजेंद्र जी, क्यों ना हमारे

0: सूर्य नाम हमारा प्यारा देश, तुझ पे मरने से इनकार नहीं। ये गाना सुनते ही हम सीधा सूरीनाम ही पहुंच जाते हैं।
1: तो राजेंद्र जी, आप कब चल रहे हैं हमारे साथ सूरीनाम?
0: बस मार्च में चलेंगे, फरवरी या मार्च में
1: चल चलेंगे।
0: हाँ,
1: तो हम सूरीनाम जाने वाले हैं। शांता जी, आप भी चलने वाले हैं?
2: हाँ, हम साथ में चलेंगे।
1: और हमारे सभी सुनने वाले जो इस समय ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो वो भी अपना मन ये होता होगा कि चलो हम भी सूरीनाम हमारा प्यारा देश और उस ओर। राजेंद्र जी, हम दूसरा गीत के ओर बढ़ने वाले हैं, और अगले गीत का बोल क्या है ये तो हम अभी बोलेंगे नहीं, पर धीरे धीरे उस ओर हम सबको बढ़ना है, क्योंकि ये संदेश भी आए है कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदरता होता है व्यक्ति के कर्म के, उसके विचार और उसके वाणी के, उसका अव्यवहार और उसके संस्कार के, और उसका चरित्र के। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर वास है। तो ये संदेश जो हमारे लिए भेजे गए भारत देश से, और हम उसे कोशिश करते हैं कोई ना कोई रूप में यहाँ, और लाइव ब्रॉडकास्ट जो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो जो न्यूटन रात 25 से किया जाता है आप सभी के लिए और सुनाने को। हमारे अगला गीत के ओर हम बढ़ रहे हैं। राजेंद्र जी,
0: गीत के बोल है लागी छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही गीत आता है तो सब लोगों को पता चल ही जाता है कि अब हमारा प्रोग्राम जो है विराम की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है, तो क्यों ना इस गीत के बोल जो है सुना दिया जाए सबको,
1: तो फिर आगे देखा जाएगा।
0: आगे फिर देखा जाएगा।

ये खूबसूरत गीत बहुत खूबसूरत है। तो सुनने वालों, जैसे आपको पता है तो यहाँ से हमारे प्रोग्राम जो है, जैसे राजेंद्र जी ने कहा, विराम को लेने को जा रही है। और जाते जाते मैं ये कहूँगी, मानो तो माँ गंगा मानवता का कल है, मानो तो माँ गंगा मानवता का कल है, ना मानो तो सिर्फ एक नदी का जल है। इसी वाणी के साथ सुनने वालों, आप सभी को शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम यहाँ से स्वीकार हुए।

तेरी कसम। जैसे ही इस गाना का बोल सोच लिया तेरी कसम आता है, तो हम सोच लेते हैं कि ठीक हमारा समय विराम का होता है। और फाउन हिंदुस्तानी की रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि राजेंद्र सिंह का प्रेम भरा हार्दिक नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी बार। तब तक के लिए नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करती है। जब तक रास्ते समझ में आती है, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। यहाँ तक हमारा कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जो यहाँ पर अपना समाप्ति पे आकर के पहुँचे। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आपके इसमें जरूर लाभदायक मिले होंगे। हमारे सहयोग साथी और शांता खिमाई जी जो हमारा सहयोग थे, और पनेल के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी जो हमारे साथ सहयोग दिए, सभी को एक शुभ रात्रि, नमस्कार, और फिर मिलेंगे।

सुनो लो, मैं आपका सेवक संजय और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। कहते हैं कि किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है ये आप खुद समझदार है, या कर्म के रास्ते पे चलेंगे या धोखा देने का इच्छा रखते हो।

मैं हूँ संजय और कुछ ना कुछ तो सुनाते रहेंगे, क्योंकि

क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे इस गाना का धुन भी बदल गया, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने आप को किस प्रकार से बदलने चाहते हैं? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं।

जैसे कि अभी आपने सुने। नो मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं। लौटने का रास्ता बस ये मत गवाना।

क्योंकि कहा गया कि असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिसके परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है।

कैसे आपको सुख को प्राप्त होगा, क्योंकि किसी ने यह भी कहा है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो चाहे देर से आएगा लेकिन आएंगे जरूर। बस धैर्य रखो और खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों को साथ देती है।

याद रखना, ये किस्मत भी क्या चीज है ना, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों का साथ देती है। और जो साथ देती है तो वो बस ये तीन शब्द जरूर कहते हैं। छोटे छोटे शब्द है, मैं हूं ना, और मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

खुशी के लिए बहुत कुछ। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हम समझते हैं। और ऐसा हम क्यों समझते हैं? किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुने कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव करता है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है। और सम्मान कोई बैंक नहीं होता है, सम्मान कोई बैंक नहीं होता, उसकी गारंटी सिर्फ आपका चरित्र देता है। दोस्तों, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। खुद से हारने का बस ये अपने दिमाग से निकाल दे। तो जीत निश्चित हो जाता है। क्योंकि कहा गया कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा वक्त अच्छे हो तो।

ये भी हम जानते हैं कि जीवन भी ठीक एक स्टेशन की तरह है। आप तो जरूर ट्रेन स्टेशन पे गए होंगे। इसी प्रकार से जीवन भी ठीक स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। हम इस संसार के मेला में रह रहे हैं और ठीक जीवन भी एक स्टेशन की तरह। ये संदेश भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और उसे कौन बदलता है? उसे मजबूर कौन कर देता है? कहते हैं कि लोग और वक्त और हालात। तो कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और ये मजबूर करने वाला लोग, वक्त और हालात।

कहते हैं कि जीवन के पथ प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन के पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्षों से होकर के गुजरना पड़ता है। याद रखो, याद रखो कि पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट और बर्दाश्त करनी पड़ती है।

जरूर आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। क्योंकि जीवन में पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। और याद रखो, पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट बर्दाश्त करना पड़ती है।

दोस्तों, उम्र का मोड़ कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। और ये नशा जब जिंदगी जीने का होना है तो आप जीने में भी मजा लेंगे। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जीने की, और क्या जीने की, जिंदगी जीने की। कहते हैं कि प्लसीर हैबन इन इट लाइफन।

क्योंकि एक ना एक दिन तो कहा गया है कि हम कहानी बनकर के रह जाएंगे हम सब। एक ना एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब। बस कोशिश रहे कहानी अच्छी हो।

और दोस्तों शायद इस बात को भी आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो संजय किस कारण यहां बैठे हैं। क्योंकि बिना रुके सफर कर रहे हो, और किस चीज का सफर? उम्र का सफर। उम्र बिना रुके सफर कर रही है। उम्र बिना रुके सफर कर रही है, और हम क्या करते हैं? हम अपने ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। आप इस ख्वाहिशों को छोड़ सकेंगे? कि ये उम्र कहीं रुकती नहीं है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। कहते हैं कि उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है। आप हमारे पास जरूर स्टूडियो में आ सकते हैं। हम तो हर वक्त चाय तैयार रखते हैं। आपके ही मुलाकात की फुर्सत नहीं।

क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और हमें क्यों टाइम नहीं है? कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। और घेरे हुए और जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है।

रहे थे। मैं हूं ना, ये तीन छोटे छोटे शब्दों छोटे शब्दों आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द जो किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं,

क्योंकि खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटने चाहिए। और आप किसको भरोसा कर सकते हैं?

एक संत ने भी बड़ा अच्छा कहे थे। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा था कि जीवन का असली सच जीवन का असली सच प्रेम हो या भोजन किसी को ज्यादा दे दो वो अधूरा छोड़कर चले जाता है।

सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता।

दोस्तों इस बात को गौर से सुनो कि माँ बाप वृक्ष के उन पत्तों की तरह है जिनकी छावा में तुम्हारा बचपन पला है। उनके इस उपकार को याद रखना और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना।

क्योंकि कुछ समय जब बीत जाता है जीवन का, तो जिसे हम शायद बुढ़ापा कहते हैं, वो कुछ भरोसा करने लगते हैं अपने बच्चों पे। धीरे धीरे ही सही पर सब हासिल होगा।

धीरे धीरे ही सही, पर सब हासिल होगा। जो कुछ खोया था अब तक सब वापिस होगा। यही सोचते हैं, क्योंकि इस बार भरोसा गैरों पर नहीं खुद पर है।

जैसे कि अभी आपने सुने। मां बाप कभी गलत नहीं होती, माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

पे जरूर ध्यान देना। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

कहे गए हैं कि माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। क्या है इसमें? इसमें भेद क्या है? क्योंकि ईश्वर भाग्य से हमारे सुख और दुख दोनों लिखते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख ही लिखते हैं।

आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। अंदर से एक मजबूत फैसले उसका जरूरत जरूर होता है।

हो सके तो अगर अपने जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना। जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। क्योंकि स्वार्थी कुछ और होता है।

अपने घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाए।

क्योंकि इस बात को भी याद रखना, हमेशा याद रखना, जीप कभी नहीं फिसलती है।

हमेशा याद रखना, जेब कभी नहीं फिसलती है, दिमाग में जो चल रहा है वे हमेशा जेब पर आता है। तो इस बात पे कुछ और रखना चाहता हूं। गुरु जी ने इस बात को कहे थे, पैरों का गरम, पैरों का गरम पेट को नरम और सिर ठंडा रखे।

क्योंकि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है।

समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता।

बचता है क्या? बचता है कि सबर करना सीख लो, सबर करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा।

चित्र और चरित्र किसी की पहचान में मोहताज नहीं है।

पित्र मित्र चित्र और चरित्र। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं।

दोस्तों ये गलत फैमिली में ना रहे। कि हम गलती नहीं करते, क्योंकि गलती पीठ की तरह होती है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है अपनी नहीं।

बुजुर्गों ने कहा है। ये बुजुर्गों भी क्या क्या कह गए। बुजुर्गों ने कहा है कि रूप और रुपया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये रूप और रुपया, इस पर कभी घमंड ना करें दोस्तों। क्योंकि ये इंसान के पास सदा नहीं रहते हैं।

यहाँ तक हम आपके साथ दिए कुछ समय तक यही आशा लेकर कि कुछ न कुछ और आपको अच्छा लगा होगा। यही कहना चाहूंगा, सुनते रहना फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक शहर, हर एक कोने, हर एक स्थान पे

जॉनी मेरा नाम फिल्म जो 1970 में बनाया गया, एक फिल्म जिसमें जा करके हेमा मालिनी, देवानंद और प्राण ने अपने कला से प्रदर्शन किया। क्राइम एक्शन फिल्म जिसमें देवानंद और प्राण दो भाई जो बिछड़ जाते हैं, ओ बाबुल प्यारे, लता मंगेशकर जी की आवाज में। अ ग्रेट सॉन्ग ऑफ द फिल्म जॉनी मेरा नाम 1970।

पढ़ते रहे और कहा जाता है कि यदि प्लान आ काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अभी 25 और भी लेटर बचे हुए है, ट्राई करते रहना। सुनने वालों, और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे, और बॉलीवुड सॉन्ग्स में से निकाला गया जो अगला गीत हम अपने प्लेयर पे चुन करके रखे हुए हैं।

संगम फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश जी के आवाज़ में। फिल्म में एक्टिंग किया है राज कपूर और विजयंती माला ने।

मत हो मेरी जा उदास, के झड़ोके में तुमको बिठाएंगे। और ये झड़ोके है क्या, यानी कि दिल से और वही खिड़की। और वहां बैठाकर फिल्म ब्रह्मचारी से निकाला गया, जिसमें काम किया है शमी कपूर।

दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है। जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। लिखने वाले भी क्या खूब लिखे हैं, कि दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है।

अपना फिल्म से निकाला गया 1971 से। कई दर्द भरी गीत भी चला दिया जाता है और ये बात हम जाने कि गलती से हम वो ना कर बैठे जो और कर चुके हैं, क्योंकि बाद में ऐसा दर्द भरी गीतों को सुनने में और समझने में धीरे धीरे अलग सा और शौक हो जाता है। और कहीं आपको सॉरी बोलने भी पड़े तो उसमें पीछे हटना नहीं, क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं कि खोए हुए चीजें अक्सर खूबसूरत लगने लगती है जैसे बीते हुए वक्त। बीते हुए वक्त और बीता हुआ बचपन

कर आएंगे, वो जीत कर आएंगे। फिल्म गैम्बलर से निकाला गया ये सुंदर सा गीत 1971, किशोर कुमार जी के आवाज में। एक फिल्म जिसमें देवानंद ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। और ये शब्द भी कितना गंभीरता होता है ना, जाता है कि शब्द का भी तापमान होता है, कभी गर्म भी हो जाता है शब्दों, और ये सुकून भी देते हैं। और जब ज्यादा गर्म भी हो जाए शब्दों ना, तो ये जला भी देते हैं। शब्द प्रयोग करो।

जहां कभी गर्म ना होवे। जला भी ना दे।

is full up and downs. With all down, up means nothing.

का गम माइलो फिल्म से निकाला गया 1970, जिसमें शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। ब्रोकन हार्ट सॉन्ग

वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, दिल ने पुकारा फिल्म से निकाला गया 1967 से। और मुकेश जी की आवाज में हम सब इस गीत को सुने। और कहीं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स के साथ इस फिल्म में शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिया।

ये मत कहना कि संजय ने कहा था नहीं, क्योंकि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना जीवन में एक बात हमेशा याद रखना किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना।

कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना।

हवा जब कोई छोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ये सुंदर सा ब्रोकन हार्ट सॉन्ग जो निकाला गया फिल्म पूरब और पश्चिम से, जिसमें काम किए हैं इस फिल्म में मनोज कुमार और शायरा बानू ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। पूरब पश्चिम से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा कि जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग को खास होता है। जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग का खास होता है। दोस्तों सुनने वालों, कभी कुछ गड़बड़ भी हो गया तो सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। क्योंकि जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग का खास होता है।

ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं रामायण का तीसरा कांड, अरण्य कांड।

अयोध्यापति दशरथ नंदन करुणायतन प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तों, देवराज इंद्र के मूर्ख पुत्र ने प्रभु का बल देखने के लिए आपको पहले से बताए हुए तुच्छ कर्म किए, परंतु जब संपूर्ण ब्रह्मांड में उसे कहीं शरण न मिली तो देव ऋषि नारद जी ने उसे बताया कि हे जयन, श्री राम के विरोधी को भला कौन शरण दे सकता है, अतः अब तुम प्रभु श्री राम की ही शरण में जाओ। वो प्रभु श्री राम दया के सागर हैं, वे शरणागत को नहीं ठुकराते, यह उन्हीं की बाण है। भक्तों, तब वो दुष्ट कौवा प्रभु श्री राम की शरण में जाकर त्राही माम करने लगा, तो श्री रामनाथ जी उसकी आंख से वो तिनका निकाल कर उसे एक आंख का बना दिया।

जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के बल से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को नवजात शिशु बनाकर पालने में झुलाया था, उन्हीं माता अनसुईया ने वैदेही सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा प्रदान की। माता अनसुईया बोली, पुत्र सीता, धीरज, धर्म, मित्र और नारी के आपत्ति काल में ही परीक्षा होती है। पति चाहे वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी अथवा दीन ही हो, परंतु नारी को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मन, कर्म, वचन से पति चरणों की सेवा ही नारी का एकमात्र धर्म है। पुत्री सीता, संसार में चार प्रकार की पतिव्रता नारियां हैं। प्रथम, जो नारी पति के सिवा अन्य पुरुष को सपने में भी नहीं देखती। दूसरी, जो पर पुरुष को पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है। तीसरी, जो धर्म एवं कुल की मर्यादा के कारण पतिव्रत धर्म का पालन करती है। तथा चौथी वे हैं जो अवसर न मिलने के कारण व्यभिचारिणी यानी कुलटा नहीं हो पाती।

जब सीतापति श्री रघुनंदन जी वन में आगे चले तो एक स्थान पर हड्डियों का एक ढेर देखकर प्रभु ने मुनियों से उस ढेर के विषय में पूछा तो मुनियों ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा कि हे स्वामी, आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, फिर भी अनजान की भांति हमसे पूछते हैं तो हम बतलाते हैं। प्रभु, राक्षसों के दलों ने ऋषि मुनियों को खा डाला है। यह उन्हीं ऋषियों के अस्थि समूह है। आह, करुणा निधान दयालु श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया। कंठ अवरुद्ध हो गया, यानी आवाज नहीं निकल पा रही थी। फिर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने दोनों भुजा उठाकर संकल्प किया, यानी प्रतिज्ञा की कि मैं रघुवंश क्षत्रिय दशरथ पुत्र राम आज प्रण करता हूं, यानी शपथ लेता हूं कि जब तक पृथ्वी को राक्षसों से हीन न कर दूं, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा।

जानकी वल्लभ करुणा के अथाह सागर श्री रामचंद्र जी मुनि अगस्त्य जी के चरणों में शीश झुकाकर सीता जी एवं अनुज लक्ष्मण जी के साथ आगे चले और पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। यह स्थान अत्यंत सुंदर सबके मन को हरने वाला था। प्रभु श्री राम जी ने एक सुंदर पर्ण कुटीर बनाकर सीता जी एवं लक्ष्मण के साथ वहीं निवास किया। जब प्रभु श्री राम जी ने पंचवटी पर निवास किया हर ओर आनंद ही आनंद छा गया। पर्वत नदी और तालाब अत्यंत शोभायमान हो गए। एक दिवस सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु

हे सौमित्र, भक्ति सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही प्राप्त कर लेता है, परंतु भक्ति भी उसी को मिलती है जिसकी पृथ्वी के देवता सिद्ध प्राणी के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद के अनुसार जीते हैं और कर्म में रत। हे लक्ष्मण, भक्ति का फल वैराग्य, वैराग्य का धर्म में दृढ़ता और धर्म में प्रेम का फल मेरी प्राप्ति है। भक्ति नौ प्रकार कही गई है। इस प्रकार धर्म रक्षक, मर्यादा का निर्वाह करने वाले रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, जीव, ईश्वर एवं भक्ति का उपदेश दिया, जिसे श्रवण करके सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी धन्य

प्रभु श्री रामचंद्र जी के संकेत पर सुमित्र लक्ष्मण जी ने उस दुष्टा राक्षसी सूर्पनखा के नाक और कान काट लिए। रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो उन्होंने लक्ष्मण के हाथों सूर्पनखा के नाक कान कटवाकर राक्षस राज रावण को चुनौती दी हो। उधर सूर्पनखा रोती बिलखती हुई खरदूषण नाम के राक्षसों के पास गई। नाक कान से रक्त इस प्रकार बह रहा है मानो विशाल काले पर्वत से गिरू का झरना फूट रहा। सूर्पनखा ने रोते बिलखते हुए खरदूषण को संपूर्ण आप बीती सुनाई तो खरदूषण क्रोध में आकर अपनी सेना लेकर श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए चल दिए।

पुलस्त्य वंश में उत्पन्न हुआ विशर्वा ऋषि का पुत्र राक्षस राज महाबली रावण को जब सुरपनखा ने खरदूषण वध का समाचार सुनाया तो रावण ने सुरपनखा को समझाकर अपने बल का बखान करके महल में भेज दिया। परंतु रावण स्वयं चिंता मग्न हो गया। रावण विचार करने लगा कि खरदूषण तो मेरे समान बलशाली थे, उनको भगवान के सिवा अन्य कोई नहीं मार सकता। इसका अर्थ है श्री भगवान ने धरती का भार हरने के लिए अवतार धारण कर लिया है, अतः अब मैं उनकी स्त्री का हरण करके उनसे वैर करूं, क्योंकि इस तामस शरीर से भजन तो होता नहीं। यदि वे कोई साधारण मानव हैं तो उन्हें युद्ध में मारकर यश पाऊं, और यदि वो स्वयं श्री हरि हैं तो उनके कर कमलों से मृत्यु पाकर उनकी धाम जाऊंगा।

बेचारा मार क्यों इधर कुआं उधर खाई। यदि रावण के कहे अनुसार नहीं किया तो रावण मार डालेगा, और यदि इसका कहा मानकर सोने का हिरण बना तो प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु। तब हमारी ने निश्चय किया कि इस पापी के हाथों मरने से अच्छा यही होगा कि मैं श्री हरि के हाथों मरकर उनके धाम जाऊं। तब हमारी सोने का सुंदर हिरण बन गया और पंचवटी आश्रम के निकट जाकर उछल कूद करने लगा। जब जनक नंदनी श्री राम वल्लमा सीता जी ने उस अदित्य मृग को देखा तो सीता जी ने विनय पूर्वक श्री राम जी से कहा, हे नाथ, देखिए कितना सुंदर हिरण विचर रहा है।

मायावी मृग पर जब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बाण चलाया तो उसने श्री राम जी की आवाज में हाय लक्ष्मण पुकारा। उधर आश्रम में जब सीता जी ने ये दुख भरी वाणी सुनी तो उन्होंने सोचा कि स्वामी किसी संकट में है। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को श्री भगवान के रक्षा हेतु जाने का आदेश दिया। सुमित्रा नंदन ने आश्रम से जाते हुए मंत्रपुरित एक रेखा आश्रम के चारों ओर खींचकर कहा कि हे माता, आप इस रेखा से बाहर मत जाना, ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। इस रेखा के अंदर जो भी जीव प्रवेश करेगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। उधर लंकापति रावण आश्रम को सुना देख याचक के वेश में आश्रम पर जा पहुंचा और भिक्षाम देही कहकर अलख जगाई।

जिस प्रकार बधिक के मजबूत जाल में कोई नन्ही सी चिड़िया फंसकर केवल पंख फड़फड़ाती है, उसी प्रकार जनक नंदनी श्री सीता जी दुष्ट और महाबली रावण के कब्जे में केवल हे राम रक्षा कीजिए की दर्द भरी पुकारे कर रही है। जब आकाश में विचरण करते हुए गिद्धराज जटायु ने श्री राम नाम एक नारी स्वर में सुना तो उसने सीता जी को पहचान लिया कि ये तो मेरे सखा महाराज दशरथ की पुत्र वधु सीता है। अतः जटायु ने सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने हेतु राक्षस राज रावण से युद्ध किया, परंतु रावण ने तलवार से जटायु के पंख काटकर उसे भूमि पर गिरा दिया एवं सीता को लेकर उड़ चला।

अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, आनंद के राशि, अजन्मा एवं अविनाशी श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। पशु पक्षी पुष्पलताओं झरने आदि से एक अबोध शिशु की भांति श्री सीता जी का पता पूछ रहे हैं। अनुजी लक्ष्मण जी उन्हें धीर बंधाते हैं। इस प्रकार चलते चलते उन्हें घायल अवस्था में गिद्धराज जटायु मिलता है, जो उन्हें बताता है कि हे प्रभु, जनक दुलारी सीता जी को लंकापति रावण बलपूर्वक ले गया है। इतना कहकर जटायु प्रभु श्री राम की बाहों में प्राण त्याग कर उनके धाम को चला जाता है। गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करके श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते

श्री रघुनाथ ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्री राम जी बोले, हे भामिनी, सावधान होकर 9 भक्ति सुनो। प्रथम भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। हे भामिनी, गुरु के चरण कमलों की सेवा अभिमान रहित होकर करना मेरी तीसरी भक्ति है। और कपट तजकर मेरे गुण समूह का गान करना चौथी भक्ति है। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में अटल विश्वास पांचवी भक्ति है। इंद्रियों को वश में करके निरंतर संतों के धर्म में लगे रहना छठी भक्ति है। संपूर्ण विश्व को राममय देखना और संतों को मुझसे अधिक महत्व देना सातवीं भक्ति है। और जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना तथा पर दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। कपट रहित होकर मेरा भरोसा करना, हे भामिनी, मेरी नवीं भक्ति।

श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी आगे चला। राह में श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से विलाप करते हुए जा रहे हैं, जिनका नाम लेते ही मनुष्य समस्त दुख संताप संयोग वियोग से दूर हो जाता है। आज वही गुणातीत श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं राम की लीला राम ही जाने। दोनों भाई चलते चलते पंपा नामक सरोवर के निकट पहुंचकर सरोवर के शीतल जल में स्नान करते हैं। तभी वहां देव ऋषि नारद जी आकर श्री राम जी को प्रणाम करके वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, वे सब जो एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नारद, राम नाम सबसे बढ़कर हुए। तब श्री रघुनाथ जी एवं अस्तु कहकर नारद जी को सुन

0: प्रभु प्रेमियों, अरण्य कांड में भक्ति का मार्ग ही प्रभु को पाने के लिए सहज उपाय बतलाया गया। कलयुग में प्रभु को पाने का तीन रास्ते ऋषियों ने बतलाए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान और कर्म का रास्ता पकड़कर हम इस घोर कलयुग में सफल नहीं हो सकते। ये कलयुग के लिए केवल भक्ति मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। भक्ति के लिए समय, स्थान, जात पात की कोई भी पाबंदी नहीं।
1: इच्छा का त्याग करने में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है, और इच्छा की पूर्ति करने में सब पराधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं।

विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ इस समय

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिनके घर पे नया बच्चा आई है तो उन्हें हार्दिक से स्वागत और बहुत सा बधाई आप परिवार को दिया जाता है। जिनके आज जन्मदिन है उनके भी बहुत बहुत बधाई दिया जाता है।

सभी जो अपने नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अप्रत्यक्ष वरदा तुगवंश। जो अपने स्कूल के तैयारी में लगे हुए हैं तो उन्हें भी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए और ये कहना चाहूंगा हर बार की तरह कि माँ सरस्वती को बोलना नहीं, बुद्धि और ज्ञान के बांटने वाले माँ सरस्वती को जरूर नमन कर लेना।

हमारे देश में सफर से आए हैं तो उनको ये कहना चाहूंगा कि वेलकम इन नीदरलैंड। Een land vol met plekken waar je kan bezichtigen.

met mooie markten. Hele mooie bruggen in Nederland. Mooie gebouwen langs Amsterdam en over het hele land. Maar jo Amsterdam mein kaha jata hai, unko dekhne ke liye log kitne deshon se aate hai. Langs de snelweg. इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर घरों जो हमारे देश में बनाए गया है, जिनके आर्किटेक्ट ऐसा ऐसा काम करके रखे हैं, उनके देखने के लिए बहुत से देशों से लोग आते हैं। कुछ सुंदर सा घर जो नौ तौर में भी बनाया गया है, जिनको देखने के लिए लोग अनेकों देशों से आते हैं। Architect van Nederland. इसी प्रकार से हर एक शहरों में कुछ न कुछ है जो आप देख सकेंगे। और जो सफर पे जाने वाले हैं, उनके लिए ये कहूंगा कि समय पे उपस्थित हो जाना, ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। सुनने वालों, हम पहला भजन की ओर बढ़ेंगे।

निखिल वर्मा की आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनने वालों कहते हैं कि मंजिले मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पा लिया है, जा जिंदगी तेरे जरूरत नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

दो ही मकसद है मेरे जीवन के, तुझे पाना या तेरा हो जाना। ये सुंदर सा भजन हम सुने सिंपाल खारल की आवाज में। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। आप सभी को एक सुप्रभात कहते हुए हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे। राधा नाम की माला गजेंद्र प्रताप सिंह और निखार जूनियर ने गाए हैं।

कहते हैं कि जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे, अध्ययन भी चलता रहे और दिया भी जलता रहे। सुना लो हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

गाय ने केला देखकर और मुंह मोड़ लिया। सुनने वालों, एक महिला ने गाय के सामने जाकर फिर उसके मुंह में केला देना चाहा, लेकिन गाय ने केला नहीं खाया। पर महिला केला खिलाने के लिए पीछे ही पड़ गए थे। जब महिला नहीं मानी तो गाय सींग मारने के हो गए। महिला डरकर बिना केला खिलाए चले गए। महिला के जाने के बाद पास खड़े एक सांड, जिसे हम बैल से जानते हैं, और पूछा, वे इतने प्यार से केला खिला रहे थे, आपने केला क्यों नहीं खाया और उसे डरा कर भगा भी दिया? गाय बोली, प्यार नहीं मजबूरी है, आज एकादशी है, महिला मुझे केला खिलाकर पुण्य कमाना चाहते हैं, वैसे ये मुझे कभी नहीं पूछती, गलती से उसके मकान के आगे चले जाती हूँ तो डंडा लेकर मारने को दौड़ती है, प्रेम से सुखी रोटी भी मिल जाए तो अमृत तुल्य है, जो केवल अपना भला चाहते हैं वे दुर्योधन हैं, जो अपनों को भला चाहते हो वो युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहते हो वो कृष्ण कहलाते हैं।

की प्रार्थना सदा कुछ मांगने के लिए नहीं, अपितु ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके प्राप्ति आभार व्यक्त करने के लिए होनी चाहिए। Lieve luisteraars, een goede morgen toegewenst. और जो हमारे देश में सफर करने को आए तो उनसे ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे दनहाग शहर में जो मार्ग कहलाते हैं द ग्रोथस्ट मार्ग फॉर यूरोपा, 3 keer 450 मीटर लंग, और जहां से दुनिया के हर एक प्रांतों से लोग वहां भी अपना सामान लेने को आते हैं, सुनो हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

किसी ने अच्छा कहा है कि नया रोशनी नया दिन एक शुभ दिन आपको प्रस्तुत है। हैव अ ब्यूटीफुल डे। जो इस समय अपने कार में ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें शुभ यात्रा कहा जाता है।

दोस्तों, ये कहा जाता है कि उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, हमारे उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है।

दोस्तों कहते हैं कि दूसरों के दिल में आप जो स्थान रखते हैं वही आपकी वास्तविक दौलत कहलाते हैं।

और सुनने वालों, मनुष्य को ठंड और घमंड दोनों के विचार सहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में इंसान अकड़ जाते हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज में हम सब सुनेंगे एक सुंदर सा गीत जो उन्होंने एक कॉन्सर्ट में गाए थे।

जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। और सफर, जिंदगी और सुहाना, ये तीनों चीजों जो साथ में हैं,

सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है।

कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जरूर मैं आपके साथ देंगे। और जो किसी से वादा किया होंगे तो अगर आपने वादा किया है तो जरूर उस वादा को भूलना नहीं।

दोस्तों कहते हैं कि अगर छोटी छोटे बातों को बड़ा बनाओगे तो आपका बड़ा परिवार छोटा होता जाएगा।

एक वक्त जीवन में ऐसा भी आता है जब इंसान को अपने सच्चे और अच्छे होने पर भी पछतावा होता है। दोस्तों, कभी इस बात पे ध्यान दिए है आपने, या कभी आपने ऐसा कुछ किया है जो आप निभा नहीं पाए? क्योंकि कभी काल के हम कहीं किसी से वादा भी कर लेते हैं और वादा को नहीं निभा पाते हैं, तो क्यों ना वही गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

आशा भोसले एंड किशोर कुमार, ये सुंदर सा गीत में और जो अपने कलाक से प्रदर्शन दिए देवानंद और हेमा मालिनी ने। कहते हैं कि झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग लगता है। दोस्तों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, शहर जिसे हम दनहा कहते हैं वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है।

दोस्तों ये कहा जाता है कि उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, हमारे उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है।

दोस्तों ये तो आप सुने होंगे कभी कि जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो।

अनुराधा जी के आवाज में हम सब सुने रहे ना रहे हम। दोस्तों, ये कहानी भी शायद आप सुने होंगे कभी कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है।

ये सुंदर सा गीत छूकर तेरी मन को। और दोस्तों, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समय एक ऐसा घड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं, यानी कि समय पीछे को कभी नहीं जाता है, आगे को बढ़ते रहे और बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे ना। समय पे ध्यान देते हुए एक गीत आपके साथ चलाएंगे और फिर हम आपसे विदा लेंगे।

रिश्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

हाँ जी, आपसे प्यार है, आपसे प्यार है। उदित नारायण अलका जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल जी के पहला पहला पिक्चर सपने में। वो सपने में वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। मेरे प्यारे दोस्तों, कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। और कहते हैं कि प्यार इंसान से करो उसकी आदत से नहीं, प्यार इंसान से करो उसकी आदत से नहीं। और रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। और आगे में भूलो उनकी गलतियों को, भूलो उनको गलतियों को पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे,

अलका जी की आवाज में, अलका जी की आवाज में आपके प्यार में हम बनने और संवरने और निखरने लगे। फिल्म का नाम रास और इससे पहले का गीत आपने सुने कि दिल लगा लिया मैंने, अलका जी और उदित नारायण जी के आवाज में आपके लिए पेश किया गया दिल है तुम्हारा, फिल्म का नाम। सांसें सांसें किसी का इंतजार नहीं करते, सांसें यानी कि आदम, हम सांस जो ले रहे हैं, हम सांस जो ले रहे ये किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। चिंता इतना कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि चिंता इतना कीजिए कि काम हो जाए, पर इतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, मालूम तो सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। पर पूछ लिया करो क्या हाल है, थोड़ा सुकून दिल को मिलता है। क्या हाल है आपका मेरे दोस्त?

इस बार आपके लिए हमने चुन कर रखी हूँ फिल्म डर से की जानू तेरी नजर, उदित नारायण जी की आवाज में।

मेरी किरण फिल्म डर से ये सुंदर सा गीत उदित नारायण जी की आवाज में यहाँ से आपके लिए आपका फावन हिंदुस्तानी रेडियो से चला दिया गया है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। लंबा धागा यानी कि अलांगा तौ अफखार, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखिए। धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखनी चाहिए। एक समय के बाद सुंदरता नहीं बल्कि मर्यादा और संस्कार आकर्षित करती है। और मेरे दोस्तों, सब कुछ जान कर भी अनजान बने रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। और ये एक सुंदर सा लाइन है माता पिता के ओर बच्चे के ओर कि माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है मेरे दोस्तों, वो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं है। और इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तब जाकर एक इंसान सफल होता है।

0: इतने सुंदर बयान अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी। और सच कहा है, आपको पता है कि भीड़ में तन्हाई में, रात के तन्हाई में बस आप ही याद आते हो।
1: डीएबी प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

लाखों आवाजों में पहचाने वाली एक आवाज ये ही, जी हाँ, लता जी की आवाज, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लता जी और उदित नारायण जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर वार में कोई ना कोई भगवान को हम जरूर मानते हैं, है ना? लेकिन जी हाँ, फिर लेकिन आ गया, लेकिन एक वार और आता है, उसे यदि सभी माने तो पूरा संसार का जीवन ही बदल जाएगा। जी हाँ, आप जरूर सुनते रहना, जरूर सुनते रहना, आपको हम यहाँ से जरूर बताएंगे वो कौन सा वार है। वो कौन सा वार है जो आता है और उसे यदि हम माने तो पूरा संसार का जीवन ही बदल जाएगा और भगवान का भी साथ मिलता रहेगा। उस वार को कहते हैं परिवार। जी मेरे सुनने वालों, उस वार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार में हमें सब कुछ मिलता है। यदि परिवार आबाद सलामत है तो सभी वार आबाद और सलामत है। इस परिवार के एकता में इतनी ताकत होती है, एक परिवार का एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई भी किसी काम में सफल हो सकता है। परिवार भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हमें इसे मान सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए।

0: एक दो दस ऊपर से आई बस कमल बारोट और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में आपके लिए पेश किया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों। और फिल्म का नाम था दिल भी तेरा और हम भी तेरे, दिल भी तेरा हम भी तेरे।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

फिल्म अलबेला से निकाला गया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म अलबेला से इसमें कमाल अपना दिखाए भगवान दादा, भगवान दादा।

भी पता है कि कौन अपना है, आंसुओं को भी पता है कि कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने टपक जाता है। वरना मुस्कुराहट तो गैरों से वफा कर लेते हैं। संयम, संयम बहुत आवश्यक है। संयम यानी कि खुद

संयम बहुत आवश्यक है रिश्तों को निभाने में, वरना दुनिया तैयार बैठे है महाभारत देखने के लिए।

आपने ठीक सुना, चिराग कहाँ और रोशनी कहाँ, उसी फिल्म से ये गीत निकाला गया है, टाइटल सॉन्ग चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में।

एक साल की कीमत उनसे पूछो जो एग्ज़ाम में फेल हुआ हो, और एक महीना की कीमत उनसे पूछो जिन्हें पिछले महीना सैलरी ना मिला हो। समय की किस्मत, समय की कीमत, समय की कीमत, एक दिन की कीमत उनसे पूछो जो सारा दिन भूखा रहा हो। एक दिन का कीमत उनसे पूछो जो सारा दिन भूखा रहा हो। एक घंटे की कीमत उनसे पूछो जिसने किसी का इंतज़ार किया हो। एक मिनट का कीमत उनसे पूछो जिनकी ट्रेन एक मिनट लेट होने से मिस हुई हो। एक सेकंड का कीमत उनसे पूछो जो एक्सीडेंट में बार बार बचा हो। इसलिए जिंदगी की हर पल का शुक्रिया करो, इसलिए ज़िंदगी का हर पल शुक्रिया किया करो।

दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, दीवाना भी पागल को कहते हैं। आपको एक छोटा रूप में बादल और किसान के बात में करने जा रही हूँ, कहानी के रूप में आपको बताने जा रही हूँ। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसेंगे। बादलों ने कहा कि अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह सब पैक करके रख दिया। लेकिन एक किसान अपने नियम अनुसार हल चलाता रहा। तो कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? तो किसान ने बोला, कोई बात नहीं, जब बरसोगे तब बरसोगे, लेकिन मैं हल इसलिए चलाना। तो किसान ने कहा कि लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। अब बादल भी घबरा गए। किसान के बात सुनकर बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं। तो तुरंत बरसने लगे और उस किसान के मेहनत जीत गई और जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वे हाथ मलते रह ही गए। लगे रहो, भले ही परिस्थितियां हमारे विपरीत, लेकिन आने वाले समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थिति में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। विपरीत परिस्थितियां माने के मुलाकात।

बेशक आए हो इस दुनिया में तो दुनिया देख लो जरा, जीने वाले थोड़ा से जी कर तो भी देख लो। इंसानियत ही पहला धर्म है, इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, फिर पन्ना खुलता है गीता और कुरान का।

आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मां खेंता वेग 259 बाय ऑटो वर्हूरबेड्रिव अमालिया. सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.

जाने ना, मैं समझती हूँ कि आप जरूर से जानते हैं, पर ये सुंदर सुंदर गीत आप ही के लिए सिलेक्ट करके रखी हूँ और आप ही के लिए चला रही हूँ। आपको बहुत सारा प्यार मिले। इर्द-ए-दाग इस अंखस्केंक, इर्द-ए-दाग इस अंखस्केंक। हंसी के नगमे गाते रहो मेरे प्यारे दोस्तों, हंसी के नगमे गाते रहो, वक्त निकाल कर मुस्कुराते रहो, और दिन भर हर एक वक्त अपने धुन में गुनगुनाते रहो।

अतीफ असलम और अलीशा चुनौजी की आवाज में हो तेरा होने लगा हूँ। खाना एतन भोजन खाना।

का दोस्त उसका उनका मजाक हर वक्त उड़ाता था। एक दिन उनमें से एक ने उस युवक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण यानी कि एक दाना इन कोरल भी क्यों नहीं छोड़ते? वो युवक, वो लड़का, वो बालक, उसने मुस्कुराता हुआ उत्तर दिया, इसके तीन कारण हैं। और यहाँ से मिलकर हम सुने कि वो तीन कारण क्या है जो कि ये बच्चा, ये बालक, ये लड़का खाना खाने के बाद एक वो प्लेट साफ कर देते, एक भी दाना नहीं छोड़ता था। तो उस वो लड़का ने कहा कि इसका तीन कारण है, तो चले मिलकर सुनते हैं वो तीन कारण क्या है, ताकि आगे में चलकर अगर हम भी हमारे आगे खाना हो तो उसका कदर हम करें। तो मिलकर हम सुनते हैं। पहला कारण, पिता के प्रति आदर। ये मेरे पिता के प्रति आदर है कि जो इस भोजन को मेहनत से कमाए, इस मेहनत से कमाए रुपये से खरीद कर लाते हैं। और पिता सिर्फ नहीं बल्कि माता भी मेहनत से कमा कर रुपये लाते हैं और उसी रुपये से जो भोजन खरीदा जाता है उनके लिए ये कदर है। उनके पैसे की कमाई के सम्मान करना मेरी कर्तव्य है, ये एक पहला रीज़न है। माँ के प्रति आदर, ये मेरी माँ के प्रति आदर है जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाह बड़े प्रेम से इसे पकाती है। उनकी मेहनत और प्यार से बना ये भोजन मेरे लिए अनमोल है। देश के किसानों के प्रति आदर, ये आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। उनकी मेहनत की कदर करना हमारी फर्ज है, इसलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान नहीं समझता इसलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान नहीं समझता। जितना आप अन्न बर्बाद करते हैं उतने में कई लोगों का पेट भर सकता है। उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। ये सुनकर उसके दोस्त सन हो गए, स्टिल यानी कि चुप हो गए। ये सुनकर उसका दोस्त सन हो गए, सन रह गए और उन्हें इस बात की गहराई समझ हुई कि भोजन की कदर कितना महत्वपूर्ण है।

एक बार फिर श्रेया घोषाल और आतिफ असलम जी ने सुना दे प्यारे ओरे पिया, इतने प्यार के साथ आपको सुना दी, यहाँ पे बैठे बैठे मैं भी आपके साथ लुफ्त उठाती हूँ। आदत नहीं है पीठ पीछे वार करने की, आदत नहीं है पीठ पीछे वार करने की, दो शब्द कम बोलते हैं, दो शब्द कम बोलते हैं पर सामने बोलते हैं। ये बहुत अच्छा सीख है कि दो शब्द कम बोलो मेरे दोस्तों पर सामने बोलो, पीठ पाछे ना बोलो, क्योंकि जिनको सुधरना है उनको तो पता होना चाहिए कि उनका गलती क्या है, क्या उससे सुधारना है। अगर आप दूसरों से कहोगे तो वो तो वैसे ही रह जाएगा। ये भी एक सुंदर सा कहावत है कि करने दो बकवास जो करते हैं, करने दो बकवास जो करते हैं, खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। अगर आजमाना हो तो ज़रूर से जाकर आजमाना कि खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। सच में कहते हैं कि हॉल ऑफ फादर क्लिंकन हैथ हार्ट्स, और आप वही बर्तन में कुछ सामान धर दो या खाना बना कर धर दो तो आप देखना कि उसमें से आवाज कम आएगा। एक बार फिर करने दो बकवास जो करते हैं, करने दो बकवास जो करते हैं, खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं।

मेरे रंग शरबतों का, उनके रंग शरबतों का है आतिफ असलम के। हमने सुने प्यार भरी सॉन्ग।

माय गॉड माय गॉड माय गॉड, ये दिल छू जाने वाले गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों। आप सभी को बहुत सारे प्यार मिले।

जी से मैं हूँ एक बार फिर आतिफ असलम की आवाज़ में। तू मोहब्बत है, तू ही तो जिंदगी है, तू ही तो सब कुछ है। आप है तो मैं भी हूँ और इसी तरह भी बहुत आनंद आता है आपको यहाँ से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत, रोमांटिक बड़ी सॉन्ग आपके लिए पेश करने के लिए।

DAB Plus Radio, सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले DAB Plus Radio और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

बाप भगवान अपने आप की नज़रों में अच्छे बनो। अच्छा बनना है तो अपना माँ बाप भगवान अपने आप के नज़रों में अच्छे बनो। दुनिया वालों का क्या मेरे दोस्त, दुनिया वालों का क्या, वो तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और आपके नाकामी के पीछे हंसेंगे। तो अपने नज़रों में अपने आप के लिए अच्छे बनो।

काल का याग्निक और एक बार फिर अतीव असलम प्यार भरा गीत आपके लिए। किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा, कबूल और स्वीकार उसकी दुआ प्रार्थना हुई, जिसने माँ बाप को अपने पास रखा, जिसने माँ बाप को अपने पास रखा, उन्हीं के रोजा और उपवास कबूल और स्वीकार हुई। जमाने से मोहब्बत निभाने वाला मेरे दोस्तों, जमाने से मोहब्बत निभाने वाले पहले उससे तो मोहब्बत निभाओ, पहले उनसे तो मोहब्बत निभाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। अक्सर ये बात हम भूल जाते हैं कि पहला प्यार हमारा है वो है माँ बाप, और जो हमारे जीवन में कोई साथी आ जाता है तो हम उनके आगे अपने माँ बाप अपना पहला प्यार को अक्सर भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि जमाने से मोहब्बत निभाने वाले पहले उससे तो मोहब्बत निभाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है।

0: I'm late. I have to go.
1: Come here. Let's get our own place.
0: What?
1: Let's get our own place.
2: क्या तू शर्त लगा ले अक्षय, मूविंग इन विद हर इज अ बैड आइडिया।
1: विक मैं कह रहा हूँ, शी इज रियली नाइस।
3: अबे शी इज अ प्रिंसेस यार।
2: अपने घर का रेंट तो तू अफोर्ड कर नहीं पाता, उसके लिए घर कहाँ से लाएगा?
3: अबे तू पेंटर है, कोई वॉल स्ट्रीट ब्रोकर थोड़ी ना है।
2: ट्रस्ट मी ऑन दिस।

हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हमेशा की तरह आज भी हर दिल से नाता है। सभी को हमारा राम नाम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल हो। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो अब से लेकर 3 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, हमारा प्यार भरा मोहब्बत पहुँचे, पैगाम पहुँचे, ढेर सारा दुलार पहुँचे। और आज शुक्रवार है दोस्तों, देखा जाए फ्राइडा 11 सितंबर हो चुका है, 2026 में हम चल चुके हैं। जिस घर में मातम है, प्रॉब्लम है, दुख है, और जहाँ सुख भी है, हमारा पूरा टीम आपके साथ है, फोन रेडियो आपके साथ है, हमारा डायरेक्टर भी कुमार गिराव हर एक आपके साथ में है। आज का मौसम देखा जाए तो काफ़ी बारिश हो रहा है, और हर एक जगह से आप जाते हैं, हर एक काम पे आप करते हैं, अपने काम पे हो, नौकरी पे हो, बचा के हर चीज़ करना, संभल के बचा कर, अलर्ट उसे कहते हैं, हर चीज़ देख के करना। अगर आप रास्ते पे हो, कार में हो, बचा के चलाना, क्योंकि मौसम अच्छी नहीं है। अभी आप सुन रहे थे हमारे कोलेखा शांता के माई को, हम 3 बजे तक रहेंगे, उसके बाद राजन द्वार का हमारे कोलेखा रहेगा लाइव, आप प्रोग्राम को सुनते रहना। चलो दोस्तों, हम प्रोग्राम को बताते हैं, हम चलाएंगे कुछ गाने ही, जैसा मौसम है वैसे गाने हम चलाएंगे, उसके बाद कुछ चुनमुन वाला गाना चलेगा, डांस का दूसरा नाम है चुनमुन वाला गाना चलेगा, उसके बाद हम चलेंगे सवाल और जवाब का प्रोग्राम। सवाल मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, ऐप कीजिए और सही जवाब को दीजिए, सही जवाब पे आप एक गाना मांग सकते हैं। सवाल को हम करते हैं, सवाल मैंने कर दिया था, आज फिर से आप लोग से कानों तक हम पहुंचाता हूं। ध्यान से सुनिए, जो भी प्रोग्राम के सुन रहे हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, अपन जगह पे है, वहां से हिलता नहीं है। ऊपर जाए, नीचे आवे है, अपन जगह पे बा और ना हिले है। तो एकर ऐप द्वारा मुझे इसका हल दीजिए, ओकर अंतर दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, तो हक बनता है एक गाने को आप मांग सकते हैं। आज फ्राइडा है दोस्तों, आज जुमा भी है, हर एक हमारा मुस्लिम भाइयों बहनों के कहते हैं जुमा मुबारक हो। अल्लाह ताला जो भी अपना नमाज को पढ़ चुका है, और हम अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, दुआ करते हैं, हर एक चीज़ से बचाया जाए, हर एक गुनाह से बचाया जाए, हर एक बीमारी से बचाया जाए, यही मांग है अल्लाह ताला। ठीक है दोस्तों, हम कुछ एक गाने को मैंने रख दिया है, और देखा जाए कुमार शानू का आवाज़ है, जगजीत सिंह का म्यूज़िक है, और मूवी है गुदाई नेखन तीन फिर नेखन तक का गाना हम आपके सुनाते हैं, और हम भी सुनेंगे, हम सब मिल के सुनते हैं। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो पे, हम रहेंगे 3 बजे तक आपके साथ।

जी हाँ दोस्तों, किस मौसम में कुमार शानू के आवाज जद्दीद सिंह के म्यूजिक और मूवी गुदाई नेखंतीन फिरन नेखन तक के है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हमले चलते हैं उदित उदित नारायण और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज़ हम आप लोग के सुनाते हैं। और आनंद बख्शी का म्यूजिक है और मूवी है मोहरा का निकाला हुआ ये गीत है जो हम आप तक पहुँचाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, हर पल मेरी होंठों पर उदित नारायण, कविता कृष्ण मूर्ति का आवाज है, म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और जो हाथ कलम स्याही चलाया गया है वो और कोई नहीं है, वो है रानी मलिक, और मूवी है दिल है बेताब के, ये गाना जो अभी आप सुन रहे थे दिल है बेताब। और चलो दोस्तों हम ले चलते हैं दिल में आग लगा के, देखा जाए किशोर कुमार की आवाज़ है, हरेश खन्ना और टीना मुनीम इसमें काम किया है, म्यूजिक है एरदे बर्मन और लाइरिक्स से आनंद बक्सी।

0: तुम्हारा खाना लग गया है, आओ।
1: जन तो भी आप जोड़ रहे थे, हम आगे आप लोग को ले चलते हैं, देखा जाए तो एक बार फिर से ले जाते हैं मूवी मोहरा। मूवी मोहरा आनंद बक्सी का लिरिक्स है और म्यूजिक है विजू झा और उदित नारायण और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज़।

0: तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज अभी आप सुन रहे थे और म्यूजिक बजाया गया है विशु शाह और लाइरिक्स है आनंद बख्शी, मूवी मोहरा। ठीक है दोस्तों, मैं ये प्रोग्राम को आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, अब से लेकर 12 बजे तक हमारा कुछ हिले मिले जुले गीत होगी, जैसा मौसम वैसा गाना हम आप लोग को सुनाते हैं और एक बजे से हम चलाएंगे आधे घंटा, एक घंटा हम चलाएंगे चुनमुन वाला गाना, 12 बजे से 1 बजे तक चलेगा कुछ डांस प्रोग्राम, जो भी है जैसे भी है ज़रूर 12 बजे से 1 बजे तक अपना घर पर बैठ के खाते हैं ब्रेड, खाते हैं कॉफ़ी पीते हैं या अपना नौकरी पे है, हम चलाएंगे कुछ गाने जो आप खाते खाते थक नहीं जाते, थक ना जी, खात खात खाते ही रहना, ऐसे से गाने हम चलाएंगे प्रोग्राम को सुनते रहना। और हम उसके बाद चलाएंगे सवाल और जवाब का प्रोग्राम, काफ़ी लोग हैं जो सही जवाब को दे चुका है और गाना को मांग कर चुका है, गीत को हम ज़रूर सुनाएंगे, सही जवाब पे सही गाना हम ज़रूर आप लोग के तक पहुँचाएँगे। आप है तो हम है, हम है तो आप है, भूल मत जाना हम सब चुने द एफ अगेन लव फ्राहन हिंदुस्तानी रेडियो से हम बातें करते हैं, गाने को सुनते हैं, हम आपको ले चलते हैं देखा जाए मूवी अर अमर प्रेम नेकिन तक का और एर देवी बर्मन का म्यूजिक है, लाइरिक्स से आनंद बख्शी, सिंगर है किशोर दा किशोर कुमार और इस फिल्म में काम किया है रेस खन्ना अजहर मिला टैगोर। बोले ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, जैसा मौसम वैसा गाना।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए,

जी हाँ दोस्तों, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार के आवाज से। और मूवी देखा जाए अमर प्रेम लेखन तीन ट्विन सिफ्ता का ये गीत है। ठीक है दोस्तों, हम यही एक बार फिर से सवाल को हम दोहराते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, अपन जगह से अपन जगह पे है, हिलता नहीं है, ऊपर जाए नीचे आवे है, अपन जगह पे बा और ना हिल है। काफ़ी अच्छी सही जवाब तो आ चुका है और काफ़ी अच्छे अच्छे गाने भी मांग किया गया है। जो भी गाना आपको मांगना है, पुराना नए, आप सब गाने को मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम चलते हैं, एक बार फिर से देखा जाए उदित नारायण और कविता कृष्णामूर्ति, तेरे बिन तेरे सनम, बिन तेरे सनम। देखा जाए लतीन लतीफ इसका म्यूजिक बजाया है और देखा जाए मजरूत सुल्तानपुरी का लायरिक्स है और मूवी है यारा दिलदारा, यारा और दिलदारा का निकाला हुआ ये गाना है।

जहाँ दोस्तों बिन तेरे सनम मर जाएंगे हम। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़। चलो दोस्तों हम आप लोग ले चलते हैं मूवी कति पतंग का करोड़ों का दिल बहलाने वाला। और आप जानते हैं जो करोड़ों का दिल बहला चुका है और द मिलियंस ऑफ आर्ट, हम मुकेश का एक गाना आप लोग को सुनाते हैं। और देखा जाए इसका म्यूजिक जो है आनंद बख्शी ने बजाया है, लायरिक्स आनंद बख्शी और म्यूजिक है एर दे फिरमन। चलते ही जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग।

जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो, बाल मूवी कति पतंग नहीं खनती जईफन तक का है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं, मिलके सुनेंगे एर दे बर्मन का म्यूजिक है, और एक इसके बाद हम न्यूज और रिक्लामों की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे।

0: किस तरह हो सकती है मद्रास
1: तमिलियन
0: ओ इको गल है कविता तेरी नू है
2: मैं कह जी साउथ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से तेरी सोनी है
3: रजी एनू मिल साडे प्रीति लवर अन्याय
2: अन्याय भला भी कोई ना होया

जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दोस्तों तो कुछ हीले डोले वाला गाना आप सुन रहे थे। ऐसे से गीत हम आपको सुनाएंगे कि अब एक घंटा हिल सकते हैं और नाच भी सकते हैं हमारे साथ।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे हैं दिलबर। दिलबर क्या गाना है यार, क्या अंदाज में गाया है, और इस पे खूब आप हिल सकते हैं और डोल सकते हैं, क्या क्या और कर सकते हैं। अब हम सब मिलके सोचते हैं इस गाने पे और कैसे हम सब डांस करते हैं, चुनमुन कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हम चलते हैं, और याद रखना कि आप सब चुन है द एफगिन लव फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम चलेंगे 12-1 बजे तक, चुनमुन वाला गाना, हो सकता है आधा घंटा और चलाएंगे। तब तक के लिए हम सब मिलके सुनते हैं बस सिर्फ चुनमुन वाली गाना।

जी हाँ जी हाँ, प्यारे सुनने वाले, भी आप सुन रहे थे बॉलीवुड डांस नंबर्स, और क्या गाने हैं, क्या अंदाज में और क्या अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं कजरा रे बुंदी और बबली से, जिसमें ऐश्वर्या राय, अभिषेक और अमिताभ बच्चन ने काम किया है इसका कजरा रे, और म्यूजिक इसका म्यूजिक बजाने वाला शंकर एहसान लोली, और गुलजार का लायरिक्स है लोई, शंकर एहसान लोई का म्यूजिक है। चलो कजरा रे

जी हाँ दोस्तों, कजरा रे शंकर जय की शंकर शंकर एहसान लोई का म्यूजिक है और लाइरिक से गुलजार का। देखा जाए तो काफ़ी दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और काफ़ी लोग हैं जो सही जवाब को दिया है और गाने को मांग कर चुका है ऐप द्वारा। हर एक गाने आ चुका है अंदर। अभी हम थोड़ा देर बाद प्रोग्राम को चलाएंगे। हम सोचते हैं हल्फ तभी से हम प्रोग्राम को चलाएंगे सवाल और जवाब तक तक तक तक के लिए हम चलते हैं। आज नचले देखते हैं, मैंने कहा था ना कुछ चुनमुन वाली गाना हम आप लोग के लिए चलते हैं। सुनिधि चौहान का ये आवाज है।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं नचले नचले नचले, नहीं तो पूरा बाजार घुमाएंगे, देना के बाजार हम घुमाएंगे अगर आप नहीं नाचेंगे। मैंने कहा था मैंने कुछ डांस नंबर आप लोग के लिए लाऊंगा, कानों तक पहुंचाऊंगा, घर तक पहुंचाऊंगा। आप बस हिलिए डोलिए, थोड़ा डांस कीजिए। घर पे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं, काफ़ी अंदाज में इस गाने को गाया गया है और काफ़ी इसका जो क्लिप है जहाँ पे माधुरी दीक्षित ने डांस किया पूरा ग्रुप के साथ, क्या डांस है, एक बार देख के देख लीजिए घर पे यूट्यूब से। और क्या डांस है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप जानते हैं वीकेंड हो चुका है, आज फ्राइडा है, 11 सितंबर, घड़ी क्लब देखा जाए तो फिर फिलहाल फेन हो चुका है। हमारे पास वक्त नहीं है इतना ज़्यादा, अभी हो जाएंगे भी चलेंगे हम कुछ सवाल और जवाब पे। तब तक के लिए हम चलते हैं चुनमुन वाला गाने से, हम आप लोग के खुश करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, जुम्मा का रात है, जुम्मे का मन है और हर एक जुम्मे से ही। और अभी आप सो रहे थे, कुछ भटकती हुई नगमा है। चलो दोस्तों, मैं आप लोग को ले चलते हैं फिर से चुनमुन वाले गाने पे। काफ़ी वक्त नहीं लेंगे, वक्त नहीं है, हम चाहते हैं आप लोगों मज़ा ले। अगर आप लोग मज़ा लेते हैं तो हम भी मज़ा लेंगे। यहाँ से हम तो लेते हैं, आप सब मज़ा लीजिए।

जी हाँ दोस्तों, राजा तेरी चुनरी राजा तेरा जल्दा भी आप सुन रहे थे और आप सब चुने एवरग्रीन लव फ्रॉम हिंदुस्तानी रेडियो से।

जी हाँ दोस्तों, मेरा पिया घर आया। अभी आप सुन रहे थे जनसुम चलती दैया दैया दैया रे अलका यग्नी दिल का रिश्ता है मूवी, ऐश्वर्या राय अर्जुन रामपाल, म्यूजिक नदीम शर्वन और लाइरिक्स से जमीर।

दोस्तों दैया दैया दैया रे, अभी आप सुन रहे थे क्या गाना है दिल का रिश्ता। अब से इस गाने को निकाल करके मैंने आप तक पहुंचाया है और हम आगे चलते एक गाना और चलेगा, आखिरी गाना चलेगा जो हिले मिले जुलो गीतों से मैंने आपको सुनाया है, और उसके बाद हम चलेंगे न्यूज़ और कुछ रिक्लामों की तरफ। उसके बाद हम चलाएंगे आधे घंटे और कुछ चुनमुन वाला गाना, उसके बाद हम चलेंगे सवाल और जवाब की तरफ।

0: जी हाँ, हमारे सुनने वाले, हम चलेंगे अब न्यूज और रिक्लामों की तरफ, उसके बाद हम फिर से आपसे मिलेंगे।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

जी हाँ दोस्तों, जुम्मा मुबारक। और चलो मोमिनों, जुम्मा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक मुसीबत से आप लोग के बचाए, और जो भी गुनाह हो चुका है गुनाह करने से बजाए, और जो गुनाह हो चुका है उसे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला से ही दुआ है।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे हर एक दिल की दवा है मोहब्बत। ये था दो जुमे का जो कवाली या नात है हम आप लोग के पेश करिए। हमारा हर एक मुसलमान भाई और बहन जो इस प्रोग्राम को सुना है, हम आप सबको जुमा मुबारक कहते हैं। यहाँ तक था हमारा प्रोग्राम, अब हम ले चलेंगे सवाल और जवाब, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग है ऐप पे जो सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांग किया है। सबसे पहले हम चलेंगे सुरीनाम।

मंगलवार को हम जरूर पूरा करेंगे। तो गीता काशी राम ने सही जवाब को दिया है, लिखा है तराप, तराप तराप है, सीढ़ी है, जो सीढ़ी पे आप चलते हैं घर का सीढ़ी है, अगर आप ऊपर जाते हैं और नीचे भी आते हैं वो अपने जगह पे हिलता नहीं है। बढ़िया अंतर थे, ये सवाल का जो जवाब है हल बहुत बढ़िया हल दिया है मुफरो गीता और काशी राम उसका नाम है। और वक्त आप गई नबी गुलाम वैक से और मांग क्या है हम आप लोग को सुनाते हैं, हम सब मिल के सुनते हैं सवाल और जवाब का जो फरमाइश है।

ज्या दोस्तों वेलकम तक से गुलाम अली बेग से गीता का श्रीराम सही जवाब को दिया था और मांग क्या था कहीं तो मिलेंगे मोहब्बत की मंजिल अभिजीत भट्टाचार्य का आवाज़ है मूवी मिलन और जैकी श्रॉफ इसमें काम किया है मनीषा को राला के साथ। ठीक है गीता का श्रीराम आप प्रोग्राम को सुनते ही हरदम पसंद करते हैं हमेशा प्रोग्राम को पसंद करते ही फाउन रेडियो को पसंद करते ही प्रोग्राम को सुनते हैं आज भी सुनते हैं हमेशा सुनेगा और सुनते रहेगा आपका गाना आपके घर तक मैंने पहुंचा दिया है। ठीक है दोस्तों हम चलते हैं सुरीनाम की तरफ फिर से दोस्तों हम चलते हैं तितलीफो कनाल से जहाँ से आनंद घिसियावन प्रोग्राम को सुनते हैं वो भी पसंद करते हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ इस परिवार में मैं भी राबिया मैं और राबिया इस परिवार का एक हिस्सा हूँ हिस्सा बन चुका हूँ हमारा भाई है आनंद घिसियावन जो कमवाई ने कहा लेकिन वहाँ मेरे सौरख हम संग बड़ा हुआ हूँ और हमारा भाई से बड़ा है नाता में भाई के से बड़ा रिश्ता है। एक घटना घटा था इस परिवार में इसका सार दो हफ्ता हो चुका है जिसका ध्यान तो गया हर चीज़ हो चुका है और ये लोग काफ़ी सोच में है हर एक घर में ऐसा चीज़ हो जाते ही तो लोग नहीं जानते हम क्या करेंगे हर एक घर में हो सकता है होगा और हमेशा होता रहेगा जहाँ वहाँ जो जहाँ पे वो गया है हम सब एक रोज वहीं पे जाएंगे और इस परिवार के लिए हम यही मांग करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं ईश्वर से मांग करते हैं अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि हर इस परिवार में इतना सहन शक्ति दे इतना ताकत दे कि ये सब अपना दुख से दूर हो सकते और दुख को सह सकते हैं इतना सहन शक्ति दे और आनंद अपने प्यारे सार के लिए जो अब नहीं है इस दुनिया में और याद छोड़ के गया है वो तो नहीं है काफ़ी याद छोड़ के गया है और ये सब यो याद से जुड़ा है और आज आनंद प्रोग्राम को सुनते हैं और मैं एक गाने को मांग किया है और एक भजन को मांग किया है आज अंधेरे में है हम इंसान हम आपके साथ है इस परिवार के दुख में हम सब शामिल है पूरा टीम पाहुन का शामिल है आपके दुख में हम तो घर के हैं मैं भी शामिल हूँ राबिया भी शामिल है इस परिवार में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं भाई का नाता है छोटकी का नाता है परिवार को हम अच्छी तरह से जानते हैं इन परिवार में हमारा पूरा टीम शामिल है इस दुख में हमारा फाहुन हिंदुस्तान रेडियो शामिल है। आनंद आपने एक भजन को मांग किया है हम इस भजन को सुनाते हैं आप सब पूरा परिवार जो वहाँ पे हॉलैंड देश से आया है भाई है बहन है सबको हम भगवान से मांगते हैं सहन शक्ति दे इस दुख को सहने के लिए

जी हाँ दोस्तों, यही मांग है कि हम सब ज़रूर इन अंधेरे से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन तो भी निकलना चाहिए। और यही इस गाने में मांग किया है, आज अंधेरे में हम हैं इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। यही मांग है। और आनंद घिसियावन अपने साल के लिए मांग किया, पूरा परिवार जो इस वक्त वहीं पे है, अभी तक बैठक हो रहा है, ये दो तीन हफ्ते के बाद है जहाँ पे इसका साल का इसका सार जो है ध्यान्त हो गया है और अब इस दुनिया में नहीं है। और मांग क्या था, आज अंधेरे में है हम इंसान, बस चैन शक्ति दे मालिक, यही मैं मांग सकता हूँ और यही मैं मांगता मांगूंगा पूरा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। ठीक है दोस्तों, हम आगे जाते हैं, एक बार फिर से हम जाते हैं वहीं पे जहाँ से ये गाना को मांग किया गया है। हमारा छुटकी है मीना दुर्जन का जो भाई है, उसका भाई था जिसका देहांत हो गया है और काफ़ी सोच में ही काफ़ी परेशानियां हैं इन परिवार में, और वो भी अपने भाई की याद में एक गाने को मांग किया है। और पल पल दिल के पास सदा भाई बहन हमेशा बहुत बहुत अच्छे थे, भाई बहन में प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा थे। आज मीना दुर्जन अपना भाई को मिस कर रहा है और कम हो रहा है इस परिवार में, ताकते हैं खोजते हैं ढूंढते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं, बस दिल में दुख है और पीड़ा है। कहाँ गया मेरा भाई, जहाँ पे वो गया वापस नहीं आएगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हम सब भी वहीं जाएंगे जहाँ पे वो है, एक दिन बारी बारह सब कोई वहीं पे जाएंगे। और चुटकी तरह ये गाना हम तो लोग खतीन सुना भी और पूरा परिवार के लिए अच्छा गाना है इस वक्त मांगने के लिए। और हम आपके गाना सुनाते हैं, आप लग पहुंचाते हैं, आप प्याल से बैठ के सुनिए। हम आपका भाई बहन जो हॉलैंड से है, सभी के लिए ये गाना मैं सुनाता हूँ।

जी हाँ दोस्तों, परिवार घिसियावन और परिवार दुर्जन, आनंद घिसियावन और मीना दुर्जन के साल और भाई अभी दुनिया में नहीं है और पूरा पूरा फैमिली वहाँ पे हॉलैंड से गया है और इसका जो वो काफ़ी काफ़ी प्यार छोड़ के गया है और सोच छोड़ के गया है। किसी का मामा थे, किसी की काका थे, किसी के दादा है, किसी का मौसा है। जहाँ पे ये रहे, भगवान से ही मांग है, प्रार्थना है कि अच्छे से रहे, जिस दुनिया में वो है अच्छे से रहे। यही हम मांग सकते हैं, पूरा फाहुन का टीम मिल के मांगते हैं, जहाँ भी है अच्छा से रहे ये भाई जो इस दुनिया में नहीं है। और हम आप सबको, पूरा टीम आप सबको बहुत सहन शक्ति दे, आपके दुख में हम शामिल हैं, आपके साथ हम हैं। जो भी है जरूर मुझसे बात कर सकते हैं। और आनंद और मीना, या डंके वेल एंड ऐसे फोन को सुनते रहना, हम आप लोग के साथ है, हम लोग के साथ है, आपके दुख में साथ है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं सवाल और जवाब के प्रोग्राम में, क्योंकि वक्त कम है, हम वक्त से जुड़े हैं। हम देखते हैं हमारा जो करों को फार्मेसी का अंदरई रामदयाल सिंह जो सवाल पे सही जवाब को दिया है और लिखा है तरप तरप, सही है, सही बात है भाई अंदरई, और काफ़ी अच्छे गाते हैं, हमारा साथ देते हैं। टेक अ चांस करक फॉर मासी में हमारा साथ देते हैं, काफ़ी अच्छे गाते हैं। और मांग क्या है देखा जाए, हेमंत कुमार का एक गीत है, ऊँचे नीच उच्च नीच का भेद, और मूवी हम भी इंसान हैं नीकन तीन फैफन नीकन तक का है। और देखा जाए तो म्यूजिक हेमंत कुमार का है और लाइरिक से सई लिंद्रा का। हम चलते हैं भाई अंदरे, आपके गाने आपके आपको मैं सुनाऊंगा, आपके पास लेके आ रहा हूँ, मिल के सुनेंगे,

जी हाँ दोस्तों, ये गाना बस यही तक था। और हम ये भी मैं कहना चाहता हूँ भाई अंद्रेई से, भाई अंद्रेई जो इस गाने को मांग किया है, इसका मतलब जो है अगर हम समझ जाते तो लोग इस दुनिया में कम प्रॉब्लम होते और प्रॉब्लम ही चला जाती। अगर हम इसे संभल के समझ के चलेंगे, बात करेंगे लोग से, यही इस गाने में गाया है जो मैं आप लोग को बताता हूँ। और काफ़ी पुराना गाना है भाई अंद्रेई, आप तो चुन चुन के गाना हरदम हमेशा मांगते हैं। ये भी एक चुना हुआ गाना है जो बहुत अच्छी है और इसका मतलब है जो बहुत अच्छा मतलब है। हेल मोये बतई गणेश, हेल दीप बतई गणेश, इसे कहते हैं इसे कहते हैं समझौया के मौत। अगर समझ जाते तो दुखी दूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेल भाई अंद्रेई, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, हमेशा आप सुनते हैं और हमेशा सही जवाब को दिया है और काफ़ी अच्छे गाने को मांग किया है। नेखन फाइव तक का ये गाना है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं रुदी गोली की तरफ, जो देखा जाए ऐप पे सही जवाब को मांग क्या है। भाई अनिल खराख है लीचर, या चलत मुसाफिर मोहलिया रे, मन्ना दी की आवाज़ में सुनना चाहता है। ठीक है, इसका लाइरिक जो है लिखा गया है हाथ कलम स्याही चलाया गया है, वो और कोई नहीं है, वो है शैलेंद्रा। और म्यूजिक है, म्यूजिक देखा जाए शंकर जय किशन, मूवी तीसरी कसम नेखंतीन सेशन सेस्तक का है। ठीक है भाई, आपने सही जवाब को दिया है रुदी, हम आपका गाना आप तक ले आते हैं। जहां आप बैठ के प्रोग्राम सुनते हैं, हुए से बैठ के सुनिए, एकदम घर तक हम लाते हैं।

0: दो कन्या
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या
0: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या अरे बीड़ा के सब रस ले ली।

कपड़ा के तब रस

के सब रस ले।

वाह वाह वाह वाह, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। आप ही आप सो रहे थे दोस्तों, तीसरी कसम से निकाला हुआ गाना है नीकंती सेशन सेस्ट का है, शैलेंद्र का लाइरिक्स है और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक आवाज मन्ना दे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा भाई रुदी गोली जो अभी बहुत अच्छी गाते हैं, हमारा साथ देते हैं, टेक चेंस करा को फरमास्ती के साथ देते हैं। और भूल मत जाना नई घंटीन के अब नई 8 सितंबर का एक शो है, आप सब टिकटॉक पे देख सकते हैं। और जो भी आना चाहते हैं एक संकुंत से वानिका स्टार फुटबॉल कैंटीन में है, जो भी आना चाहते हैं फ्राई पर के रन है, आइए साथ दीजिए। अगर आप गाना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। ठीक है दोस्तों, और आने वाले सोमदाख की आप जानते हैं हर एतवार के हम करते हैं करो का इलम पास्तरात 5 से 5 तक ही स्वेक प्लेन, जहाँ पे मुर्वे स्टेशन है वहाँ से नज़दीक है, चल क्या बा सकते हैं इलम पास्तरात 5 से 5 तक इजी वेलकम हर एतवार के रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ फरमाइश भाई रिदी गोली का घर तक हमने पहुँचा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं देनाक शहर से जहाँ से अमृत मोहन प्रोग्राम को सुनते हैं और कहते हैं अनिल हमारा हम लोग साथ बड़ा हुआ है सुरीनाम में और मेर सौरख पे, वो प्रोग्राम को सुनते हैं। और देखा जाए ऐप पे लिखा है खुद मोर्ख अनिल अंतोर्त इस तरफ, और गाना मांग क्या है तेरे मेरे सपने। ठीक है, सही जवाब को दिया है आपने और सही गाने को मांग किया है। मौसम की तरफ देखा जाए तो मौसम और ये गाने, हर एक गाना जो आप सब मांगते हैं ये आज का मौसम से जुड़ा हुआ है, हर एक गाना ये मौसम देखा जाए और गाने को सुन ले जाए तो वह मौसम से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखा जाए सॉन्ग्स तेरे मेरे सपने फिल्म गुद्दी नेकन दिन 5 से 6 तक का है, पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज है, इसका म्यूजिक जो सजा करके बजा करके लाया है वो है एस दे बर्मन। फिर से मैंने कहा शैलेंद्र के हाथ कलम और स्याही चला गया है, इसका लायरिक्स शैलेंद्र का है। और हम सुनाते हैं भाई अमृत घर पे बैठ के आप सुनते हैं, कहते हैं हम कॉफ़ी पी रहा हूँ और थोड़ा ब्रेड कास खा रहा है। ठीक है, आप कॉफ़ी पीजिए और आपके गाना में आपके बगल से आप सुनेंगे, बगलिया में तो टेलीफोन वाबा। ठीक है, घर तक पहुँचाते हैं और प्रोग्राम से ख़रीद कीजिए, मज़ा लीजिए। अगर आप मज़ा लेते हैं तो हम ज़रूर मज़ा लेंगे, आप है तो हम हैं, हम है तो आप है, भूल मत जाना। द एवरग्रीन लव द लव फाहून हिंदुस्तानी पे हम सब चुने जो दनहाक शहर से प्रोग्राम को करते हैं।

जी दोस्तों, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ये अमृत मोहन जो जनाक्षर से प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग क्या था सही जवाब को दिया है और गाने को मांग क्या था मैंने ये गाना आपका नाम कर दिया। भाई अमृत, बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रोग्राम को सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं दनाक पुल देख से किशन कोहाबीर प्रोग्राम को सुनते हैं। और देखा जाए ऐप पे, हम देखिए लिखा रहेगा कैक देश अंतर इस तरफ ऐसे के लिखल बा। और इस वेल हेलो मलखूत किशन, सही जवाब है, सही सही सवाल पे सही जवाब को दिया है। सच में ये सीढ़ी है तरफ, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं एक जगह पे है, वहाँ से हिलता नहीं है। ठीक है इस तरफ, और मांग क्या है देखा जाए तुम ही जिश्ता मूवी भूत बंगला। और इसका जो म्यूजिक बजाया वो है प्रीतम और लाइरिक से कुमार, सिंगर अरिजीत सिंह और निहिता गांधी। हम आप लोग के सुनाते ही और मिलकर सुनेंगे। किशन सही जवाब को दिया है, हम पहुंचाते हैं आपके कान तक।

जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत का सगुन मूवी दिल है तुम्हारा, आल कयग्नि कुमार शानू और उदित नायक का आवाज अभी आपने सुना है। और चला गया राबिया जो सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांगा है। मुफरो राबिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं और हमसे गाने को मांगते हैं। ठीक है, हर एक जो प्रोग्राम को सुनते हैं हमारा, सभी को एक बार फिर से हम कहते हैं धन्यवाद, शुक्रिया। जितने दूर तक ये आवाज़ जाते हैं वहाँ तक एक बार फिर से हमारा प्यार भरा दुलार मोहब्बत पहुँचे। देखा जाए तद्री क्वार्तर और बचा है हमारा तुम्हारा साथ, तब तक के लिए हम चलते हैं जर्मन की तरफ जहाँ से ममता प्रोग्राम को सुनते ही। और देखा जाए टेलीफोन पर, देखा जाए ये भी इसने भी कहा है तरफ सही जवाब है ममता और सही गाने को मांगा है। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्नि, दिल तुम दिल की धड़कन हो, इसका जो म्यूजिक है नदीम शर्वन और लाइरिक से जमीर

0: उफ देव, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ।
1: रहते हो
2: जी हाँ दोस्तों, तुम दिल की धड़कन में देखा जाए। अक्षय कुमार, सुनील दत्त, शिल्पा शेट्टी, कदर खान ने इसमें काम किया है, अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक का आवाज था, नदीम सरमन का म्यूजिक थे और जमीर का लाइरिक्स, और गाना चला गया था जर्मन की तरफ जहाँ पे ममता प्रोग्राम को सुनते हैं। सही जवाब भी सही गाने को मांगा है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। बहुत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया ममता, धन्यवाद, प्रोग्राम को सुनते हैं।

और ऐसे सुनते रहना, वक्त नहीं है, काफी लोग हैं और हम कैसे कैसे प्रोग्राम को चलाएंगे। अगर सभी का फरमाइश मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मंगलवार को हम जरूर प्रोग्राम को पूरा करेंगे। ठीक है, हम आप लोग को ले चलते हैं लेवार्ड वृसलान, जहां से भैया शिव गोविंद प्रोग्राम को सुनते हैं, आनंद शिव गोविंद सुनते हैं, राजन राम शरण सुनते हैं, राकेश जद्दू सुनते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं। सवाल पे जवाब को दिया है, सही जवाब को दिया है, देखा जाए तरप तरप, ठीक है, सही जवाब है। जितने लोग वहाँ सुनते हैं एक गाना हम आप सबके नाम करते हैं और देखा जाए किशोर कुमार सिंगर है और जुगल किशोर तिलक राज इसका म्यूजिक बजाया है और देखा जाए एम खे हंसमत इसका म्यूजिक बजाया है। म्यूजिक है भीगी पलके स्थानिक राज बब्बर सुनीता पटेल और ऐसे ऐसे लोग भी इसमें खेला है और काफ़ी अच्छे गाना है। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है किशोर दा की आवाज़ है और चला जाते हैं फ्रिस्लत ली वार्ड की तरफ जहाँ पे लोग सुनते हैं और आप सबके नाम है ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, ये जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, देखा जाए इस मूवी भीगी पलके हंस मात का लायरिक से जुगल किशोर तिलक राज का म्यूजिक है। ठीक है दोस्तों, ये चला गया था लेवार्द, जहाँ से आनंद जुगोबीन भैया सुगोबीन राजन रामचरण प्रोग्राम को सुनते हैं, राकेश भी है, और ये गाना आपके नाम हमने कर दिया है एकदम लेवार्द फ्रिस्लान से। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग फहन को सुनते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं दोस्तों ईडन के तरफ, ईडन जहाँ से शकुंतला जी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है, सही जवाब को दिया है तरफ और मांग किया है। देखा जाए मूवी परदेस निगंती सैफ ना निगम तक का फिल्म है और कुमार शानू का आवाज़ है, नदीम शरवन का ये म्यूजिक है और लायरिक से आनंद बख्शी का।

जी हाँ दोस्तों, ईदन से, ईदन का शकुंतला जी सही जवाब को दिया है और इस गाने को मांग किया था, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। देखा जाए तो मूवी है परदेश निकंतिन सैफ न निकंत का, कुमार शानू का आवाज़ था, नदीम शर्मा का म्यूजिक और आनंद बख्शी का लाइरिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, ऐसे ही सुनते रहना प्रोग्राम को और पसंद करते रहना। ठीक है दोस्तों, हम चलते सूरीनाम एक बार फिर से, एक बार फिर से तितली फो कनाल, जहाँ से सुनीता बुधाई प्रोग्राम को सुनती है। और देखा जाए तार पे लिखा है अनिल तराप, माफ कर दिए, अनिल तराप है उसका अंतोत तराप है। ठीक है सुनीता जी, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग किया है। देखा जाए फिल्म रफ्तार से एक गीत है जो आशा भोसले मुकेश की आवाज़, अभी हम आपको सुनाएंगे और इसका म्यूजिक बजाया है सुनिक उमी और लाइरिक्स से अभिलाष, इसका लाइरिक्स लिखा है और गाना का बोल है संसार एक नदिया दुख सुख दो किनारा है। काफ़ी अच्छी गाने को मांग किया है, हम सब मिल के सुनेंगे इसमें ये गाना आशा भोसले मुकेश और मौसमी चक्रजी इसमें काम किया है और विनोद मेहरा ने।

जी हाँ दोस्तों, मूवी रफ्तार आशा भोसले मुकेश और सुनिक उमी का म्यूजिक है और अभिलाष का लाइरिक्स है। और चला गया था सुरीनाम तिली फोकना से, जहाँ से सुनीता बुधाई वहाँ पे फकांसी से और प्रोग्राम को सुनते हैं। और सही जवाब को दिया था, सही गाने को मांगा था। संसार एक नदिया, दुख सुख दो किनारे है, ना जाने कहाँ हम जाते। सही गाना है और दुनिया ऐसे ही है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं इस वक्त देनहा, जहाँ से वातरेगंसफेल, जहाँ से सांद्रा प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है तरफ। ठीक है, सवाल पे जवाब को दिया है, हम उसका गाना भी सुनाने वाला है। और मांग किया है तिप तिप बरसा पानी, अक्षय कुमार रवीना टंडन उहित इस फिल्म में काम किया, उहित नायन का आवाज़ है। और मैं अगले सवाल आप लोग से करना चाहता हूँ। अगले सवाल ध्यान से सुनिए, सवाल को सुनने में मजा है और तब उसका हल आप बता सकेंगे। कौन सा चीज है जो पीने के लिए खरीदा, कौन सा चीज जो पीने के लिए खरीदा लेकिन पी नहीं सकता। ऐसा कौन सा चीज है जो आप पीने के लिए खरीद के रखा है, खरीदा है लेकिन पी नहीं सकता। इसका हल अगर आप बता देंगे तो तार खुल चुका है हमारा ऐप, आप ऐप पे कर सकते हैं। मंगलवार को पीर रहेंगे और जरूर हम आपको गाने को यूज करके आपके काम तक पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा तार का नंबर है 0643809033। मेरा ऐप का नंबर है, आप मुझे ऐप कर सकते हैं। तार खुल गया है ऐप और हम चलते हैं वातरगंज पर, जहाँ से संदरा प्रोग्राम को सुनते रहो। सही जवाब को दिया, मांग क्या है टिप टिप बरसा पानी। और देखा जाए फिल्म मोहरा है, नेगन दिन फिल्म नेगन तक का है। अक्षय कुमार, रवीना टंडन, उहित नारायण, अलका याग्निक और विशु शाह और आनंद बख्शी का लाइरिक्स है, म्यूजिक वीरू शाह का म्यूजिक है। हम आपके नाम करते हैं सांद्रा, आ रहा है दम वातरेगंज फैल, तुम पहुंचाए लोग अनुमत तुरखतिन। ठीक है,

जी हाँ दोस्तों, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दी। मैं जैसे देख रहा हूँ वातावरण स्पेल में आग लग चुकी है, पानी बरस चुका है लेकिन आग बुझा नहीं। ठीक है, जहाँ से संदरा प्रोग्राम को सुनते और पसंद भी करते हैं, अच्छी गाना को मांगा है, पानी तो बरस चुका है लेकिन आग अभी बुझी नहीं। यही है दंग केवल संदरा, बहुत बहुत शुक्रिया क्या प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद करते हैं। हमारा बहन जैसा है सदा दिद्दा बुलाया है, बहन है। ठीक है सांतरा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नाम ये गाना चल चुका है। मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये बताने के लिए कि एक आखिरी गाना चलेगा, उसके बाद हम चलेंगे न्यूज़ और रेखलामक तरफ। हम एक आखिरी गाना आप लोग के सुनाते हैं और ये गाना है हमारा पूरा टीम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और इंक्लूसिव हमारा जो डायरेक्टर है कुमार घिराहो, और हमारे तरफ से आपके नाम पूरा टीम के तरफ से जितने लोग इस प्रोग्राम को सुना है, काफ़ी दूर दूर से प्रोग्राम सुना गया है और लोग सुनते ही, और हम सबके फरमाइशें नहीं पूरा कर पाया है, मंगलवार को हम ज़रूर करेंगे। और एक आखिरी गाना चलेगा दोस्तों। मैं एक बार सवाल फिर से पूछना चाहता हूँ, कौन सा चीज़ है जो पीने के लिए खरीदे लेकिन पी नहीं सकते? ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमने कीन के रखा है लेकिन पी नहीं सकता? ऐसा कौन सा चीज़ है जो पीने के लिए ख़रीदा लेकिन पी नहीं सकते? अगर आपको हल मालूम है तो मेरा ऐप खुल चुका है, मुझे ऐप कर सकते हैं मंगलवार के लिए। तब तक के लिए एक आखिरी गाना चलेंगे और वो भी है देखा जाए चल अकेला चल अकेला, और मुकेश का आवाज़ है दोस्तों, ओपे नायर का म्यूजिक है और प्रदीप कुमार का लाइरिक्स है और मुकेश का आवाज़।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज मूवी संबंध और चल अकेला चल अकेला। ओपे नैयर उसका म्यूजिक बजाया है, प्रदीप कुमार ने उसका लाइरिक्स को लिखा। दोस्तों ये था हमारा पूरा टीम की तरफ से हर एक सुनने वालों जो रेडियो फोन को सुना है और सुनते हैं। मैं न्यूज और रिक्लामों की तरफ चलता हूँ, तब इसके बाद में हम जरूर आपसे मुलाकात करेंगे।
1: Beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतो के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होत है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होत तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर। कोई बात नहीं, होत तो होत होते हैं। तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

हो तुम्हें ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं आप ही का हैप्पी सीजन फाइव होने निस्ताई दे रही हूँ राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्थ का कनोपखात जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

प्यार में तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना। तेरे होठों के फूल

जब दो होती हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते हैं, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते हैं दोस्तों। अब की बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरी होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं। अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

के होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

0: पीछे मैंने कहा दोस्तों तो सामने बैठा हुआ है श्रीमान इंदर भोलाई, भैया भोलाई, आपके मैं स्वागत करता हूँ फा हन हन साइन रेडियो के स्टूडियो में।
1: रेडियो फा हन हन के सुनने वालों सभी परिवार आप सबको हार्दिक से धन्यवाद है कि आज हमें ऐसा अवसर मिले है आज आप लोग के अपने दो जुबान से सेवा करने के लिए। आप सबको राम राम, नमस्कार और सलाम पहुँचे हमारा।
0: इंदर तू बताओ, टोके तो हम बहुत दिन से हम लोग का जान पहचान है, मारा न हम ज़्यादा तो के ढोलक बजाओ देख ली है महफिल में। और तुमसे बताओ तू कहाँ से हले, सा नाम से हले कि या इंडिया से, कहाँ आपका पैदाइश?
1: मैं तो सुरिनाम के निवासी हूँ, मुझे यहाँ पर काफ़ी साल हो गया। मैं हॉलैंड आया यहाँ पर कुछ पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद फिर और बाकी परिवार आने लग गए यहाँ, तो बस हम लोग यहाँ पक्का यहाँ का बसिंदा बन गए और अपना जीवन यहीं पर बस गुजारते हैं।
0: इंदर तू हमसे बताओ, तू ढोलक बजाए मैं तू सा नाम से शुरू कर ले बजाए कि अब हियाँ पर आए तब सीख ले है, कैसे है बात?
1: ऐसे हुआ कि हमारे पिताजी तो काफ़ी नामी ढोलक बजाने वाला था सुरिनाम में, और हमारा बड़े भाई जी रूप बोले, मेरा पिताजी का नाम था राम भरोस बोले, तो इसीलिए घर पे और गांव में पहले जहाँ भी पर नौता होता रहा ना, शादी विवाह या कथा भागवत, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बैठक गाना चलता रहा। और हमारा तो इंटरेस्टिंग रहा उसमें ना, उसमें मालूम रहे तो हम बहुत उसमें दिल लगा रहता रहा हमारा। तो घर पर जब कोई ना रहे हमारा बाप या भाई तो घरे ढोल रहे, तो हम भी कोशिश करें बजावे के, तो उससे हमारा बस लालसा हुआ और कुछ कुछ आ गया। फिर बाकी में एक हमारा मित्र था बारिक वाजिद हुसैन, वो तो कलाकार थे वो परिवार, और वो सुनी हमारे ढोल बजाते हुए या बोंगो बोंगो बजावत रही थी, कोंगा बजावत रही, तो सुने रहा हमें, तो हम लोग के बोले आओ लंदन हम लोग कुछ एक बैंड चलाओ जाए। तो पाछवा वाणी काम हो हम लोग के हफ्ता में एक बार दो बार रात के बुलावे तो हम लोग गाना बजाना करी अकॉर्डियम पे।
0: अच्छा तो जस्ट पहले बोंगो शुरू कर ले?
1: हाँ जी हाँ, बोंगो थ्री कोंगा।
0: अच्छा मैं तो कैसे ऑफर्स काकल भले ढोल पे
1: और हॉलैंड में आए के यहाँ पे आए, तो हॉलैंड में जब आए तो देखन थी नेखना शास्त्र सेवन टाइम में बारीक हुए बारीक वाचे वाचे हुसैन भैया वो भी आए गए रहा, तो यहाँ पर फिर से हम लोग में भेंट हो गए।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो बोले ला हम लोग बहनवा यहाँ पर चलाओ जाए फिनो, तो हम लोग शुरू कर ली। तो हम लोग घरे वीकेंड में बैठी तो ओके रहा कॉलेजियम, तो कॉलेजियम मास्टर रह देख रहा, तो वो हम लोग फिर यहाँ पे शुरू कर ले। ऐसे कोई फिर यहाँ नहीं रहे घर में, तो उन्होंने बोले आओ आज एक हफ्ता होकर यहाँ नहीं जब रहे, तो हम लोग जाए घरे बैठी बस, तो वो कोंगा और ढोल से शुरू भाई डोंगो से सॉरी, तो फिर ऐसे आस्ते आस्ते तो हम ढोल पे फिर चला गया ज़्यादा करके, क्योंकि हमारा पिताजी भी आगे रहा भाई भी रहा, तो हमारा भाई शरीफ मोहम्मद और प्यारे लाल भगन के साथ में वो लोग एक कवाली बैंड यहाँ स्टार्ट करें, तो जहाँ जहाँ वो लोग जाए हर हफ्ता गाना बजाना हो तो हम वो लोग के साथ ही जाए भी, तो हम सुने तो हमारी दिलचस्पी उसमें बहुत खास नहीं गया।
0: जिस मान लिया जाए आपका पिताजी जो था वो आपका उस्ताद था, गुरु था। अच्छा अच्छा, तो ही बोले बास के जड़ में बास फायदा हो ना, बहुत खुशी की बात है भैया इंदर, हम तो के ढोल बजाओ कई बार सुन लिया है और हरदम हम आपके तारीफ कर लिए, हरदम हम लोग चौताल गए लिए तू चौताल में ढोल बजेले, बोले कवाली ढोल बजेले, कभी मंदिर में ढोल बजेले भी?
1: मंदिर में भी पहले ज़्यादा जात रहे हर एक मंदिर में, यहाँ पर आप जानते होंगे हमारा एक भाई ने रहा महेंद्र गुदर,
0: हाँ
1: वो तो काफ़ी मशहूर था यहाँ पर, और रामायण गाता रहा चौताल गाता रहा, तो हम उन लोग के साथ हम लोग भी रामायण चौताल बजाते रहे, तो मंदिरों में जाते रहे भजन भी करते रहे कीर्तन, तो हर मंदिर में जाते रहे हम लोग, तो गणेश मंदिर देव मंदिर और आश्रम मंदिर में तो हम खास करके ज़्यादा ही जाते हैं, क्योंकि उस मंदिर के हम लोग बहुत करीब के कर्मचारी भी हैं और सदस्य भी हैं, उसमें ज़्यादा दिल लगन रहता है।
0: ये बढ़िया बात भैया। इन्हें आप लगभग आपकी उम्र कितना, कई साल के था जब तो शुरू कर ले?
1: हम करीब 17-18 साल के थे तो सुरीनाम में, जैसे मैंने अभी कहा कि भैया बारिक बाजी तुझे, तो उस समय 17 साल के हम थे।
0: अच्छा, हीलियम है?
1: जी हाँ,
0: उस समय पे काहे का बोला हीलियम, उस समय पे नौजवान लोग ढोलक ना बजावत है, सब कोई गाना बजाते, गिटार बजावत है ले, और शायद ड्रम ढोलक हल्ली ना बजावत है।
1: हाँ जी हाँ, उसमें ऑर्केस्ट्रा भी काफ़ी सुरीनाम में रहने कई यंग इंडिया ऑर्केस्ट्रा रहा और सोहानी ऑर्केस्ट्रा, वो सब बहुत मशहूर है सुरीनाम में उस समय, तो हम लोग सुनते रहे थे, बड़ा अच्छा लगा था। वैसे ही बस दिल वही रास्ता में हम भी लगा दिए।
0: बढ़िया बात। हाँ भैया, इंदर तू ढोलक छोड़ के और बोंगो छोड़ के, त्रिगोंगा छोड़ के दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी बजे ले?
1: यहाँ पर तो ज़्यादा करके तो कोशिश किया यहाँ पर हारमोनिया सीखने के लिए, थोड़ा बहुत आए पर उसमें देर ना लगा था क्योंकि हमारा शौक भी था गाना गाने का, भजन गाने का, तो अब दोनों चीज़ों तीन चीज़ों ना हो पाओ और ढोलिया पकड़ ले लिया, गर्मों भी कुछ कुछ हो जाए अभी तक।
0: या अब है तो गनवा का नाम ले ले हम तो ढोलक सुन ली वेल, मतलब आवाज़ जो गला से तो निकारे हैं हम कभी नहीं सुने, लगभग 2 या 3 हफ्ते तक बात है, हम एक जो हम गली है वहाँ पर तू गाओ पहले और तू महेंद्र कपूर के आवाज़ निकल ले, और उस खुशी में हम महेंद्र कपूर को गीत दिलाई करब।
1: अच्छा।
0: और ख़ास कर तो याद में
1: बहुत अच्छा बात है।

0: धरती के पार चले। भैया इंदर भोलाई के लिए स्पेशल हम ये गीत पेश करता हूँ। इंदर तू इस फिल्म जरूर देखे हुई है, फिल्म हमराज के गीत है।
1: जी हाँ, हाँ, हाँ, देखा है हमने। हाँ, हाँ, हाँ, या बहुत धन्यवाद।
0: यूसुफ तू देख ले फिल्म हो?
2: यस सर।
0: कई बार देख ले?
2: एक दो ही नहीं देख ले, और जरा सुना की जो बात।

0: भैयांदर, हकीकत में हमें चाहिए तो के उस्ताद बोले के, आप लोग उस्ताद है रे, इसलिए कि लोगन इतना दिन से ढोलक बजावट अले है, और जब हम बोले उस्ताद तो ढेर आदमी है जो ढोलक बजाएल है और गाना गायल है, वो कभी दूसर के न सिखाएल, फिर अपने बोले हम उस्ताद में तू न बोले कभी जबान से हमने सुन लिया है, मैं तो कह हम पड्डी डेला से तू उस्ताद है ले, मैं तुमसे बताओ तू कोई के सिखाएले है और ढोलक बजावे किया सिखावे है कैसे है?
1: आपके बहुत धन्यवाद जो आप इतने मीठे सबसे और सुंदर सबसे हमारे खातिर भाव कर रहे हैं। हम कुछ लड़कों के सिखाए हैं यहाँ पर, पहले एक था वरुण नंदा के बेटा, वो छोटा रहा तो आवत रहा हम लोग के भी चौताल समाज में, तब वो सीखत रहा हम लोग के संघ में, और ऐसे और रहने कितने अब तो पता नहीं कहाँ लड़कन चलाए, कहाँ कहाँ चल गए ने, नाम भी भूल गए ने, कुछ कुछ लड़कन आए तो रहे हम लोग के समाज में सीखे कि औरत करके। हम लोग हर शुक्रवार के फंसवेंदन सरात में मंदिर लगाता है, तो वहाँ पर मंदिर के बाद तो संगीत होता रहा, तो वहाँ पर हम लोग

0: प्यार करत रहन, संगीत और गाना बजाना और हारमोनिया के लैस और ढोल के लैस देवल यात्रा जेके इच्छा रहत रहा। और बहुत लड़कन आईने सीखने अच्छा बजावे लगल ने। अभी कल देखो हमारे एक भाई का लड़का गुजर गए, उनके काम के लिए रहा, वो भी अच्छा सुंदर ढोल बजाता रहा, राजेंद्र भुलई।
1: बीमार रहा आप सब?
0: वो उसका कुछ तकलीफ था तंदुरुस्ती का।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो कल उसका अंत्येष्टि क्रिया रहा, वो भी बहुत अच्छा ढोल बजाता रहा। हम लोग बहुत समय साथ गुजारे ऐसे ढोल प्रैक्टिस करने के लिए। और भी और लड़के, हम तो नाम भी भूल गया, याद नहीं आता, पर है कुछ औरत भी थे जो ढोल सीखे इन्हें हमारे संगत में। और अभी भी है जो चाहते हैं, पर अभी उतना दूर पहुंचा नहीं है। अभी हम तो खास करके फ्री में बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं
1: फ्री में,
0: जहाँ जो गुण हमारे हैं। हाँ,
1: तो हम कहे कम पूछे लाते इसलिए कि ना हम ना जाने लगा ना उस्ताद के जो ढोल सिखावे है, मैं उस घंटा से पैसा लेवे।
0: पता है मुझे, पता है। हाँ जी, अब जानते हैं हमारे क्या, हमारे मित्र के लड़के लोग भी जाते हैं ढोल सीखने के लिए। एक दो बार हमारे पास आए तो वो लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जाते हैं वहाँ फाहन स्कूल में, और जगह भी जाते हैं। छोटे छोटे लड़के हैं जो जिनके दिलचस्पी है ढोल सीखने का, हारमोनिया सीखने का। तो इसमें अभी लड़के हैं जिसको हम जागृत करते हैं।
1: तो आपके कला के बहुत ज्ञान है, और हम लोग कहते कला के पुजारी ना, और जब उतना ऊपर वाला दिल है ना आपके ज्ञान, तो बहुत खुशी की बात है कि आप मुफ्त में ये ज्ञान बांटते हैं।
0: जरूर, संगीत में बहुत दिलचस्पी मिलता है, बहुत लोगों को दिल खुश कर देते हैं हम लोग। अभी तक अब तो इतना ज़्यादा नहीं होता, पहले तो हम लोगों का समाज भी रहा, हम लोग का समाज हर सप्ताह कहीं ना कहीं हम लोग का अवतरित होते ही रहा था, शादी विवाह में, फिरियारी में, या और कुछ जगह मंदिरों में, हर सप्ताह हम लोग के समाज अवतरित होत रहता।
1: मतलब भैया इंदर, आप लोग ईसाई समाज नहीं है, कुछ समाज नहीं, फास्ट समाज
0: नहीं, अब हम फास्ट समाज में नहीं है।
1: तूने मांगे हैं कि नहीं ले जाए
0: फास्टी? तो नहीं चाहते, कारण कि आज कल के नौजवान भी काफ़ी लोग तैयार हो गए हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: जिन लोगों का अपने लिए खुरूप वर्णन के समाज है, वैसे मंदिर में जाते हैं, आसन मंदिर या देव मंदिर कभी चल जाइए, और मंदिर में भी कभी जहाँ तक पहुँच हो जाए तो जाइए, तो वहाँ पर हम जरूर अपना कला सुनाइए, मौका मिले तो। जैसे तेज करे थे अपन सविता
1: माँ भैया, जैसे आपसे पूछी शुरुआत में कि ढोलक छोड़ के और बोंगो छोड़ के दूसरे इंस्ट्रूमेंट के कोशिश कर ले आप, तो बोले ना तो हारमोनिया वाले कोशिश कर ले।
0: कोशिश किया था तो आने लगा था कुछ कुछ, पर उतना मेहनत नहीं किए तो ना हो सका। एक दो बार वैसे घर में मान लिया जाए, छोटा महफिल में अपना जरूर कला दिखाएं, पर जैसे कि ज़्यादा लोग के आगे अपना प्रोग्राम खुद हारमोनिया बजा कर गाना या और प्रोग्राम देना, उतना दूर तक नहीं हो सका,
1: या
0: नहीं
1: पहुँचे। जिस तरह से तू बात कर भाई, इन्हें तो तू हारमोनिया जाने है बजाए, मैं तो के मौका न मिले है और आगे जाए के
0: जी,
1: और तूने कोशिश मांग कर और आगे जाए के
0: जी, कोशिश नहीं किया,
1: मैं तू जाने
0: तो शायद हो जाए जरूर।
1: या मां भाई इन्हें अभी जब मान लिया जाए, कोई जब पूछिल तुझसे कि हम मांग लेगो एगो म्यूजिक ग्रुप तैयार करे के, तो तू सोचे है तुम्हें भाग लिए?
0: हम भाग लेने के तैयार है, कारण कि हमें वक्त है, अब हम काम नहीं करते हैं, ऐसे छोटा मोटा काम कोशिश करी है, पर अब हमें मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वक्त है। और हम भी चाहते हैं कि अच्छा वक्त कुछ अच्छे में समय बिताए अपना, संगीत में तो बहुत हर्ष की बात है।
1: भाई अंदर तू हॉलान छोड़ के सुरीनाम देश में हुआ तो बजा है, तो वहाँ बजाई ले ढोलक, और बाहर देश में कभी तू अपन संगीत पेश कर ले?
0: जी हाँ, हमारा एक ख़ास देश है जहाँ हम बहुत बार गए, फिजी देश।
1: अच्छा अच्छा,
0: फिजी देश हम बहुत दफे गए, तो वहाँ जब जाए थे रहे हम, तो वहाँ के लोग भी जान गए रहे कि हम भी कुछ संगीत में हमारा दिलचस्पी है, और ढोल जाने बजावे, गाना जाने गावे, भजन जाने गावे। तो जब भी जाते रहे वहाँ, तो हमें वहाँ के लोग बस हाथों में ले लेते रहे और वहाँ बजाएं, खास करके बहुत ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में।
1: अच्छा,
0: न्यूजीलैंड में भी वहाँ पर गए, वहाँ भी फिजी के हिंदुस्तानी बहुत बसे हैं और अपना धर्म संस्कृति बहुत जोर दोर से वहाँ चलता है, तो वहाँ भी गए, तो वहाँ पर भी संगीत सुनाए, सुने और साथ वहाँ के लोगों के साथ में प्रोग्राम दिए कुछ।
1: आप कहते हैं फिजी और न्यूजीलैंड, वहाँ के कला दूसर तरह के, जैसे हम लोग यहाँ पतले मारे है ना ढोलक हुआ, इससे उसी रकम है कि
0: वहाँ पर वो ढोलिया वो लोग कुछ दूसरा रकम है, वो दो ही ढोल बजाए।
1: अच्छा,
0: एक वो स्तांद कर दे और एक ढोलिया ऐसे गोद में रख के।
1: हाँ,
0: पर वही फिजी करके बहुत हमें अच्छा लगा, क्योंकि फिजी के संगीत हम लोग के सुरिनाम संगीत से बहुत मिले जुले हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: बहुत मिले हैं जुले हैं, और वहाँ के लोग भी, वहाँ के रहन सहन भी, खाना पीना तक हम ही लोग के तरह जैसे है।
1: तो मान लिया जाए फिजी में जो आवाज ढोल दुई ढोल से सब निकारे है, तो तू तो एक ढोल से निकाल सके तो।
0: हाँ, ये है कितनी थोड़ा कमी हो जाए है कि वो लोग दो ढोलिया जो आवाज निकाल रहे हैं वो उतना अच्छा ना लगे जैसे हम लोग एक ढोल से निकाल लेते हैं।
1: भाई इंदर, तू ढोल बजावे देखो, मान लिया कि गायक जोन है तो हरदम बोले है कि ढल, मान लिया जाए राफी बहुत मोई गावे है वगैरह वगैरह, तो ये ढोल बजाए तू बता सके कि तू कौन ढोलकिया के सोचे है कि वाह वो कितना मोई बजावे है।
0: है बाटे यहाँ का है बहुत कला उस्ताद, यहाँ भी बाटे बहुत से, अब नौजवानों लोग के तब उतना नहीं जानी, पर पुरान लोगों के हम जाने थे, जैसे रॉय देवराज, अच्छा नामी ढोलकिया।
1: हाँ, रॉय के हम यहाँ पर इंटरव्यू कर लिए।
0: अच्छा। हाँ, और रंजीत कल्लू। अच्छा, वरुण नंदा।
1: हाँ,
0: अच्छा, और एक सूरज कन्हाई लैदन में रहता, ये सब लड़के भी हम लोग समाज से हम लोग के साथ में ढोल सीखी ने, बहुत सुंदर ढोल बजाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, और इसे मान लिया जाए जब कहो ढोल कॉन्टेस्ट ऐसे वगैरह वगैरह पहले होता है, ऑफ गाना कॉन्टेस्ट, तो आप तो उस्ताद है, तब लोग के जब मौका मिली जाए कि शूरी में बैठे के, तो तू सोचे है तू कर सके वो काम?
0: बेशक, उतना पहुँच है, उतना गुण है, ज्ञान है, और परख सके उतना जरूर से, इसमें साथ दे सके है।
1: तो कुछ बोल
0: नहीं, ये
1: अच्छा, कोई बात, बहुत खुशी की बात है भैया। इंदर, हम एक गाना और महेंद्र कपूर के दराई करो।
0: अच्छा,
1: हम वो गनवा सुनाए बिना तो कहीं इतना जान लेबे।
0: वैसे हम हेमंत कुमार के गाना भी पहले बचपन में भी गाते थे, भी गाते कभी कभी, बाद में तो बैठक गाना भी बहुत गाया हमने, पर हेमंत कुमार के गाना मुझे शुरू में जवानी में बहुत अच्छा लगता रहा, उसकी आवाज़ और उसके

0: इंदर आप तो उस्ताद है लो, हमसे बताओ ये ढोलक जोन है सरनाम में हम जाने छोटा रहने को बगले रहता है वो आदमी, तो वो आम के पेड़ काट के उसे चाकू से और हाँ वो ढोलक बना हुआ था तू जो ढोलक से सिखले है माने जो किनर ढोलक है बनावा ढोलक रहा
1: तो हमारे पिताजी के जो रहा ढोल तो वो सरनाम से बनवा के लाए रहा, या सरनाम में कहाँ बना होता है न जानिए। यहाँ पर तो मेखड़ा मकड़े के कीने के मेखड़ा कीन ले कि चमड़ा अपने से हम लोग छाइए ज़्यादा करके, तो ओकर आवाज़ हम लोग अब स्टैम कर सके चून कर सकिए।
0: मग चमड़ा कहाँ से लोग पावे है?
1: बना बना हुआ चमड़ा बिके पहले बीके? तो जाने पहले माखड़ा बकरी मारे के चमड़ा हम लोग लावती है, खास करके हमारा भाई बहुत बढ़िया इसमें जाना था ओकर काम, वो चमड़ा घरे बार और छील के और बना रहे वो थोड़ा डोरिया चढ़ा रही है, तो उसे हम सीखी। और अब तो चमड़ा बना बना और गिरे हैं, बल्कि वो जो मसाला लगे ओकर ततई कैसे या तो हाकिस लगा रखे वो सब चीज़ हम भी सीख गए हैं यहाँ, तो अपने से जो बनाए में खड़वा के में खड़ा खींच के चमड़ा अपने से बनाई लगाई तो
0: फिर
1: आवाज़ कुछ और
0: रहे। तो सबसे बढ़िया चमड़ा जो ढोलक के कौन बकरी के है?
1: ज़्यादा करके बकरी, वैसे तो भी लिखवान के चमड़ा मैंने दो रकम दोनों कंती रहे, तो एक वो बकरिया चमड़ा देखो तो कम बमुआ कंती और सुरुआ कंती, तो पहले बोल पुराने बोलते लेगवाना चमड़ा बहुत विशाल
0: मतलब बड़का लेगवाना मिला था
1: में तो मिला।
0: अच्छा अच्छा भाई इंदर हम देखिला तो समय निकल जा है और तू बोले तू हेमंत कुमार गाना भी गावे है और महेंद्र कपूर के, हम तो के मौका देला चाहे एक कुपलत हेमंत कुमार या महेंद्र कपूर के आवाज़ जनता के सुना दे, जितना लयसरार से सब घरे बैठे रहे सब भी मानो थे आपके आवाज़ में एक संगीत एक गीत सुने के। तो दोस्तों भाई बहनों भैया इंदर भड़ाई के आवाज़ में आप मुकेश के का गाना है इंदर हेमंत कुमार दादा जी के एक संगीत पेश करेंगे भैया इंदर।

0: दोस्तों, भाई बहनों, आज हमारा मेहमान, हमारा आज के मेहमान के प्रोग्राम में उपस्थित था भैया इंदर फ्राई। इंदर, सुनने वालों को कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: सभी सुनने वालों को हमारा बहुत धन्यवाद है कि आप समय निकाल कर हमारे आवाज़ को, हमारे रेडियो के प्रोग्राम सुने, और आशा रखते हैं आगामी भी चल के आप लोग को हम लोग जैसे भी हो सके की सेवा करेंगे। हार्दिक से धन्यवाद, और सभी कोई आप सुखी से रहो और रेडियो फाहम सुनते ही रहना।
0: भाई इंदर फाहम की टीम की ओर से भी आपके बहुत से धन्यवाद यहाँ स्टूडियो में आने को।
2: De beste Bollywood-hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

अफ्रीका हैप्पी सिशिल फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकातिंग नकाटिंग नकासानी

मिस्टर तसीफ बक्स, और तसीफ बक्स आपके लिए पेश करेगा किसड़िया एक्स कर्म डॉन।

की बार दोस्तों, ये मोक्सी अलैसी नहीं, ये मिसिक मोक्सी है और मिसिक मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉली में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।

फ्लोरी बिना चटनी कैसे बनी? मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

बिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कड़मा अनु ताकी मिनो लोबियू, हा हा सुमा ताकी मिनो लोबियू, मिलो बियू थ्रू।

मिक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों। जगना और जगाना, राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

टोन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। हर एक काम जो आपके रेडियो के सिरे कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से या चले आइए दफ्तर पर, खुला रहता है दोस्तों रोजाना। और आपको मांगना चाहिए खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह आपके पास है तो आप शौक से चले आइए फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो के पास। पिया तू अब तो आ जा, आशा भोसले एरदी बिरमिल का म्यूजिक है। और जब ऐसा गीत है दोस्तों पिया तू अब तो आ जा, तो कौन हो सकता है जो ये गीत को एक्ट किया होगा? हेलन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। हेलन, जितेंद्र, आशा पर एक, ये सब ही काम किया फिल्म कारवा निहरी इन सीफन तक का फिल्म है। इसी फिल्म का सॉन्ग आशा भोसले के आवाज़ में आप सुनेंगे।

आजा पिया अब तो आजा, उसके बाद आजा पिया तुम्हें प्यार दो। बहारों का सप्ते फिल्म का नाम है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है दोस्तों। और ये फिल्म में आशा परेख और राजेश खन्ना दोनों इस फिल्म में काम किया। तो आशा परेख राजेश खन्ना बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, जैसे बहारों के सपने, कति पतंग, आन मिलो सजना वगैरह वगैरह, नाइटिंगेल, लता दीदी एंड एडी बर्मन के म्यूजिक पर।

1969 के बाद आपको मालूम है दोस्तों, एक फिल्म था जिसमें धर्मेंद्र काम किया आशा परेख के साथ, फिल्म आया सावन झूम के। वाह क्या फिल्म था दोस्तों, बड़ा सानी भी इस फिल्म में काम किया और एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी एंड नाइटिंगेल लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे आया सावन झूमके का टाइटल सॉन्ग। धर्मेंद्रा और आशा परेख दोस्तों ये दोनों भी बड़े बड़े फिल्मों में काम किए, जैसे आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और बड़े बड़े फिल्मों में ये दोनों काम किया दोस्तों। आपको मालूम है उन दिनों में निखिल शस्त्र के बाद है जब धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर था और आशा जी भी कुछ पीछे नहीं था, वो भी एक टॉप एक्ट्रेस था। तो दोनों का फिल्म आया सावन झूमका जो मैंने चॉइस करके रखा, उस फिल्म का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे राफी साहब एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के मीठी आवाज़ों में।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाउन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरिए दाप, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी और

तो यहां से हम तुरंत बढ़ते हैं अपना देश और विदेश के समाचार की ओर। तो हमारे जनता, हमारे सूरीनाम की जनता, नीदरलैंड की जनता, आपको हम बता देते हैं फिर से सूरीनाम हम फिर चलते हैं। और आप लोग जानवे हैं फेहा पे की ओर हम जाई है, फेहा पे हार गए रहा पर किसिंग, तो एंड पे फर किसिंग जीत गए हैं। तो एक बारे में अब फेहा पे में बड़ा जुगु जुगु होवे भैया। तो जोगी यहाँ पे बोले रहा, बोले राम दिन के चाहत रहा फोरख रखेरिंग में जोन रामादेन के ना राम दिन भैया रामादेन जो रहा वो रहा मिनिस्टर फन फॉलोस हसौंत हैद के, बोले ओके चाहत रहा ऑन स्लाख दे देवे के, बोले ओकर कारण बोले हम लोग फेहा पे बोले आज हम लोग हार गए ली है। तो एक बारे में औद मिनिस्टर फॉलोस हसौंत हैद के अमर रामादीन बोले हैगा फिर थैद बस्ती लोग ऑन बहुरलग कि ओकर पड़ते खनोर महेंद्र जोगी बोले है न बोले आनखी फर करी से गा कि मिनिस्टर वा बहुत स्लेख प्रेस तासी ले फर करी से। और बोले ओकर बारे में सर न फेहा पे बीते हुए फर किसिंग में बोले हार गए है। और बताई से गा अन अन बोले हम अन जोगी बोले संतोखी से बोले रहा कि रामादीन के तू बोले फरफंग कर दे। और बोले है पुराना मिनिस्टर जो आउट मिनिस्टर स्लाद तखलाई कर हारते हैं जोगी के कि पार्लियामेंटारी हम तेज जफोर रखेरिंग बोले रहा सरमक्का में बोले जो घरवा है जोगी के बोले हीर कर दे, बोले एचएफएस के स्टासी के फोन के जो पैसवा हमें भीतर आवे है। तो अब बतिए न सब फूटे भैया कि इस सब कौनची कौनची मांगत रहा करे। तो रामादीन बोले है बोले है गा अने जोगी बोलत रहा अपन घरवा बोले लांटी के हीर कर दे एचएफएस के, बोले कि माँ बोले कि हम ही चीजुआ ना मंगली बाटी बोले खेप है तुन बस प्रूकन, बोले ऐत रात बोले हिल खफुलख रहा बोले ऐत ब्राइडन बोले प्रेसिडेंट नादा द प्रेसिडेंट जो संतोखी बोले है waren de letterlijke woorden van de president voorzichtig stap niet in de wereld van meneer Jogi, omdat hij jou ernstige problemen kan geven. Hou ook rekening met de regering en de partij. De ik keer Ramadien ke waarschuwkeler ha, or ICC maand dus toe, aangezien de VHP tot nu toe geen evaluatie met gewezen minister heeft gehouden. Met mij is er zeker geen evaluatie geweest waaruit geconcludeerd zou zijn dat ik als minister slechts zou hebben gepresteerd. Jogi vindt dat drie ministers slechts hebben gepresteerd. Dat vind ik dat hij zijn ministers ook had kunnen aangeven op basis van de welke objectieve criteria hij tot dat oordeel zijn. Toen ik er waren met de bekende bhaiya Ramadien bole slecht raha aur kabel minister van OW ke jo raha en oké bhi bole slecht raha aur LVV ke minister bole hi sab teen go ke karan bole fiha pe haar gaye hain. Ekar bare mein to prachar hue bhaiya aur hum chalte hain aur aage ko apna samachar ko leke dosto ab dekho वाह है क्या और फेहा पे के ओर हम बाटी। और फेहा पे में बोले द स्ट्राइट और मख मख द फेहा पे नीड ब्रेकन वन। अब सब कोई मांगे फुर्सतर हुए भैया चांस तो की चल गए है। तो एक बारे में दे आना महेंद्र जोगी बोली सेगा बोले हम लोग तुई डॉइसन दर्तीन में बोले फिन से ऋषि को मुतनीवन ओम सामन वर्किंग मेट आंध्र प्रत्ययन ऐत स्लाइटन संतोखी आज फोर्सेसर सिंस दिन लेग द discussies meer te zijn verschoven van de koers van de partij naar persoonlijke kritiek op partijgenoten onder wie oud-minister en de VHP fractievoorzitter bole chahi kam karke jogi bole hai ab bole hega दूसर पार्टी से हम लोग चाहिए समावेरक करे कि अब बोले खात और मैं फर्स्टर्कन फाना फेहापी जो ने जबड़ हुए बोले मरकवार द अनरोल इधर फेहापी ही तेज रेक्ट ओम अंबिची ते हैवन फॉर द फोर्थ थिएटर का जोगी माँ हीन फोर कर हैवन दैट इज सेन खुद रेक्ट
एकर बारी में अब जोगी सब मान बोले बहुत लंबा चौड़ा भैया शर्मा का में द्री हो दैसन द्री हो द्री एंड फाइव तक स्टेम भय ला 2025 में वॉस एन इन सैन एगन डिस्ट्रिक्ट प्राग फान अनसिंगलिक terugval. Hij kreeg nog slechts 1137 stemmen. Daar roept een interessante vraag op. Was zijn performance tussen 20 en 20 onvoldoende? Of waren er andere factoren die deze uitslag hebben beïnvloed? Dus te willen apprejogieke etra komt die stem willen laten. Hij had zoveel zotra sakabaila. तो हम लिए कुछ तुरप के हम बताने फेहापे के अंदर के बांध भी बताना तो चाहिए हमारे यारो जानो फेस के आप लोग जानो तो फेस बोले ही कल्ट विल ग्रोइट कमिसिस एन uitblijven landbouwbeleid के बारे में instelling van steeds meer presidentiële commissies. Jab dekho to khali presidentiële commissies aai ke baithe hain. Santokhi ke tait pe bhi aai ke baithe hain. Ekar bare mein fes bole hai ga heikal kare hai. Platform and other work formats staat volgens de redactie van fes in zicht. Haaks op de aanvankelijke belofte van Jennifer Simon presidentke om af te stappen van dergelijke commissies. In het nawoord van de juli-editie van het Economische Blad, Economistenblad, wordt een herinnerd dat Simon tijdens haar eerste persmoment, Soratari Julike, aangaf presidentiële commissie niet thuis horen op het kabinet van president. Overleggen, het kabinet is geen uitvoerend orgaan, terwijl minister die rol wel hebben. Minister Loke toch een rol wat ik er waren met VES. Behoed Lambachon hebben we bij jou. LVV volgens de VES-redactie nog niet over een beleidsnota. Daarvoor weten belanghebbenden en samenleving niet in welke richting ministerie bij de agrarische ontwikkeling wil sturen mensen te ibaat he. Fes ke baare mein jo hekel karega voor de wilgroei commissies en uitblijven van landbouw beleid ke baare mein hamari janta. तो अब देखो भैया हम चलते हैं स्टार न्यूज की ओर भैया ब्रोको पोंदो के बातचीत है ब्रोको पोंदो में भैया स्किट इंसिडेंट दगवल भइल है अब बोले है फोर फॉलोअर अनफंकलक हमेल्ट के को बरूफिंग भइल है स्कोटू गइल है ब्लैक दैट हैड ओम अ स्किट इंसिडेंट खान बोले फरलोपक इंफॉर्मेशन बोले हैगा कि फरमुडलक ब्राजील के आदमी है और बंदूक से याखवे से दुई को तागी सेगा इन द रिक्टिंग फ्रॉम द स्लाखटऑफर्स बोले दुई द बेड पर्सन के दोनों के लगल है और सबके पेट में लगल भैया अंदर आर्म एंड है सिट फ्लक चुत्तर में भी लगल है दुई साफरल रातन गवन ऑन द रेक्टर स्कोड और बोले हैगा ब्रको पोंदो के सिकन हेंस पे सब गइल है तो ये बात है भाई दगवल के बारे में हमारे यारो हमारे दोस्तों तो हमारी जनता हम चलते भैया बैतलांद के बारे में हम जाएला ओन हुतुस के बारे में भैया चलो हुतुस जेके काम बोले ईरान एगो रिबेल ग्रुप है हुतुस के वो हैगा येमन में एगो येमन से आइसलैंड एन आइलैंड हैगा येमन में तो इस हुतुस जोन हैगा भाई इस सबके का बोले है एगो ग्रुप हैगा और एक ईरान ऑन द स्टेन करे भैया

असाइड भैया सूरीनाम में पिस्तौल वाला बहुत ज़्यादा हो गए भाई, और मिस ब्रेक भी करे हमारी जनता, मिस ब्रेक करे इदिसेन कि उस सबके ये पिस्तौल है तो सोचे हमसे बड़का कोई न बेसी पीर के बारे में सुन ले हो। तो अब देखो एगो बॉन्स खबाऊ है, एगो बॉन्स खबाऊ है, और ये बॉन्स खबाऊ कहाँ है? ये बॉन्स खबाऊ है भैया ओ का नाम बा ओ वी ओ एस बॉन्स खबाऊ हुआ पे फरमुदलक भैया बॉन्स खबाऊआ में रोव भैल है दोन दाख के रात के वैरक नीमर्स और खानिसा सी जो श्री नाम कहेगा फान ओखम ओखम वैरक नीमर्स और खानिसा सी श्री नाम के जो द्रम बरांद्र श्रख्त में है परमारिबो में हुआ पे एक आदमी चोटाई गए है भैया। यहाँ बतावे गए हैगा बस्तूर फर किसिंग रहा ओ वी ओ एस में जहाँ पे फक और खानिसा सी हैगा एनर्जी बद्राइव श्री नाम के 11 तारीख सितंबर के बातचीत है। अब बोले एरिस फोरास नो खेन फरमान बकेंट से स्किट इंसिडेंट एंड हेल्पर किसिंग अब जाने बॉन्ड की फरकीसिंग के बारे में एक मेला चुटाई गए हुआ दागी से हमारी जनता तो ये बात हैगा। बाकी तो के लगे हम जाए ला भैया भूपा उचल गए है लांटी में काम करे कर मुंह बहुत कमती खोले है जाने हरदम बोले एन श्री नाम एट एंड दान रेस। अब बाकी तो भैया एकदम मुंह में उकर पलाक बांध लग गए यास दास पहिर के चले है। अब जाए के यहाँ मुँह कोली से भैया पाकी तो बोले है तुलन जाने एबीएस बोली से गा जो हुआ के एबीएस गा लियो ब्रिंसवेग डायरेक्टर है बोले लांटी जो है दे ना बोले बहुत अख्तर स्थान है गा हम लोग के पैसा भरे के लांटी पैसे ना भरे बहुत ढेर कर्जा है लांटी दे ना खबाऊ के बारे में बोले पैसवा हमार कब भरिए मतलब के हम लोग के एबीएस के बारे में तो एक बारे में पक्की तो गए है मुंह खोले जाने का बोले है नानी एंड पे स्टेफानो पक्की तो बीरफेल बोले रे आखिर करी से बोले ऑफ द डिस्क्रिशन अश्विन अधीन और लियो ब्रेंस ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रीगनिंग फंड दिए ना बोले द टॉप मान फन ईबीएस से इन द इंटरव्यू बोले क्रिटिक बोले से दिया ना के पार्लियामेंटारियस के बोले मिसमैनेजमेंट हैगा एनर्जी बेदरिव इस मुद नाखन के डीएनए से एगन बेतालिंगसवरप्लिगिंग तीगन ओवर द एबीएस नाकोम और बोले हैगा डीएनए मर्डर खबावन है एन ग्रोत आंताल ecosystemen waren terwijl sprake zou zijn van achterstallige betaling van de EBS adhien sprak dit tegen Eurokan bole ik er maar een pakketo bole he pakketo bole he het geweldig te vinden dat Brunswick zijn uitspraak heeft gedaan en dat hij juist van de leiding van het parlement had verwacht dat dit gedocumenteerd met bewijzen de beweringen van de EBS topman zou tegenspreken. तो बतावे हैं पक्की तो अब जाए के पक्की तो मुँह खोली से भैया बोले ब्रिंसवाई के लिए ब्रिंसवाई के लेती अब देखो निकेरी की ओर जाए खेतिहर लोन के भैया पैसा ना मिलल है पैसा ना मिलल है अब एक बारे में देना ले जो है रघुनंदन एक बारे में रखे रिंग से बोले गो स्पूत ऑन सुख करवाओ हमार खेतिहर के बोले अब पैसा ना रहेगे फॉलखंड सही सुन में धान चीटे के बोले हैगा पैसा उस अपना पावे हैगा अख्तरस्तालक है बोले सबके चाहे तेल कीने के मशीन से आरबेस क्रख्तन कम करतन के भरे के और बोले वनेर फोलखंस फॉर फोलखंस यारन लंग बरीसन से बोले लीफर करीस इस सब धान बोले कान लंग बोर फोलखंस हैं फिनेंशियल फॉर लीड क्लेम को मंत जेतन सब के ना बके ढेर पैसा ना पाइसे बोले लीफरांसीस बंकन एंड अंदर स्कूल एचन मुदत इमर्स नेचुरली बताल्ड फॉर द मेंस ze pensioen naar pauwen heeft. Hij wil juist dat wordt gekeken naar de gevallen waar er achterstanden zich meerdere seizoenen hebben opgestapeld. Ketra dienst ze pensioen naar pauwen heeft. Raghunanen bole heeft. Dat wordt onderzocht of betrokken werk verwerker zich aan de geldende wet en regelgevens houden door verwerker dan waar onze pensioen naar deze wanneer zou blijken dat de onderneming structureel hun verplichtingen niet na komen mensen.
तो हमारा खेतियर निकेरी के चाउर के बारे में हिया बताए गए भैया नहीं दलंत के दुआन का पकड़ी से नानी बड़ा हाट लगे बोले मैं बतावे के पड़े है भैया पिंडा में क्रैक इन पिंडास ऐश्वरी नाम दुआन उमा कहाँ पाई से नानी कौन सी पाई से भैया नीदरलैंड से दुआन क्रैक आंख त्रोफन इन पिंडा क्रैक भाई अन वोट फुल बफेस्ट एक बारे में और बोले है अन द फोंस वर्ड में तो वोट स्पेलिंग बकेन खमाक दुआनी सौदन तेजस कंट्रोल है हील फर्स्लाफन द पिंडास हैवन आंख त्रोफन द ड्रग्स वारन फॉलगंस द मेडेडेलिंग क्रिएटिव फॉरबोर्गन मार फॉरम voor de medewerker geen lastige zaak om te krakken. De aangetroffen drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Ja, en hier betaal ik na kali krak met pawe heen, koeken hier met pawe, bhaiya, kalabu met pawe, palem met pawe, jurmachiri met pawe, he foroktu met pawe heen, kersbrood met pawe, aansienwala, zuurgoot met pawe, goed met pawe, nariyar met pawe, pinda sambal met popcorn met jurmachiri चरी में बापरे बाप और कहाँ बोले हैं बीते हुए दिनों में इस पाई से भैया बंबू में फ्लैश डेट में बलादर में पत्ता में पाई भैया ढोलक हारमोनिया में पाई से वीरोग में पाई से भाई का होए भाई धनी होए खांती नदमी इतना जबर है दुर्क्ष के बारे में हिया से हुआ पठावे हे नीदरलैंड भाई अब देखो एगो बवाकर द्रियन फेफ तक यार के सुरीनाम देश में पकड़े रहा पकड़ान है ना बवाकरवा चोर के पकड़ी से सिपाही बवाकरवा के पकड़ी से भैया एगो सेशन देर तक यार के औरत के इब फैले के आदमी फरकराख कर ले रहा verdenking voor verkrachting van een 36-jarige vrouw. Or ik er wat aanwezigen hier de meer aan. Bewaker centrale hoofdstembureau van de Friedrich Derby straat Suriname. Ke, jahan pe kabole hega stembureau hai. Centrale hua pe bewaker raha. 5 tarik september be bhaiya apan kaam pe bole hega voorgenaan op de werkplek. We pe bhai de vrouw deed aan heeft obele onderzoek in kader van een onderzoek werd de bewaker natuurlijk aangehouden. Dat kan hoe pe bhaiya jahan pe oke chahi bewaker ke hoe pe jai ke aur farkrakh kar de bhaiya ye baat hai jhamara Suriname ke jo shikari lone bhaiya jab dekho tarikyo social media pe bandook leke ja hai jangal mein ee daange u daage hai sport kare admi lone yani apan fasi sab koi khanit करे है लेकिन फोर्स एक तक रही भैया तपाना होनी में पाना होनी के बात है भैया जहां पे जगहिया गए दुर्पुक नाम्बा गोदो गोदो होलो भैया गोदो ओलो बोफन तपाना तपाना होनी खबीत में बा तब भैया शिकारी लोन गए लहा पिंगो दागे अपरे में दगा उवल कल्ली से भाई पिंगो के झटका में हिया बतावे हेगा गए लहा पिंगो दागे भैया और ओही करमिया ओके दाग के मार सोजे पिंगो दगली भाई द ट्वी वारन हेल बॉस्किन गगान ओम पिंगोस ते याखन टेडन द याख स्कूट इन फन हेन मेन अ याख गवेर अंदर याख गवेर द अंदर राखते ओके लगल है op over de precieze toedracht en de identiteit van de slachtoffers zijn nog niet de pingo ke jhatka mein apan mede yakharwe ke daak ke aur maadhari se dosto ee bari dukh ke baad bari jabar aise lemua phino bhaiya fartrak kare lagal janta bahut dukh mein bhai je un jon janta aur piwai ni khani khafir slm pe udal aur sab ke bari dukh facebook pe bhi admi बोलेगा बोले हम से एसएलएम कम्युनिकेट ना करे है तो बोले एक घंटा बाद उड़ी तो दो घंटा बाद तो इतना कब उड़ी तो फिर उड़बे ना करे है बोले वही सेन ही लमान साथ में एसएलएम में से एसएलएम फ्लिक जो ना पीवाई नहीं खनी खरफीर अम्स्टर्नार अम्स्टर्डम आवत ही लमाल का बोले अनुलेर हुई है और बोले नहीं खर सितंबर के बोले टेक्नी से प्रॉब्लम है
बोले पास आशीष वारन आल इंच चेक फॉर फॉरट्रैक 8 बजे इसे बोले उड़त भैया तू स्टेल एयरबेस आदरी फिर तक जोन बा स्काई केयर के बोले हैगा बुधवार के आमस्टरडाम आवर फॉल्स है गदिल्ड फ्लुक्ट ओवर सिक लैंड द फ्लुक्टिंग आल फ्लुक्ट in Paramaribo in de avond zou het weer naar Nederland vertrekken. In Tsjechreizigers waren nog niet aan boord op het plein mee naar Baitalame in Tsjechkertjokala. Wat er precies met het vliegtuig aan de hand is en hoeveel tijd nodig is om het probleem te verhelpen is niet bekendgemaakt, mensen. Ook is er ook geen nieuwe vertrekmoment aangekondigd door Surinaamse vliegmaatschappij. De Admiloon Bhaiya Apan Jon Jurma Chirio Chirileke Jatra. तो झूर रहेगे मैं जो आदमी फ्रीसर ईसर के चीज लेके जात रहा ऊ सब आदमी के चाहिए फिन लौट के आवे के भैया एगो तीनर भाई सुरीनाम देश में खेलत रहा स्पेल टाइम लगे रहा एक चार मर्दाना ओके बरूफ करी से भैया एगो तीनर के ब्रोम फिश से बरूफ करी सेगा तीनर के ओई बोले एगो स्पेल टाइम रहा लीली दरप वेख में सुरीनाम में और बोले हैगा ओके प्रोफेसर सुरीनाम ब्रूफ फॉर हिम ब्रोमफिश को ब्रोमफिश वो चरा ले गए है और बोले 1700 ऐसा दी लुंडवा के पास रहा वो लेके चल गए है तीनरवा भैया वारे में दे स्पील टाइम आने ऑन स्पॉट टू द फरदाख्तन ऑफ टू ब्रोमफिश को आमन आनराइडन Op de volgende slachtoffer waren de mannen niet gemaskerd en droeg geen van hem een vuurwapen. Een van de slachtoffers, een 16-jarige jongen, verklaarde tegenover de politie. Kies op een welke bedrijf crisis het ras zou leken. Waarom leken bhagge he? Lidorp kisipahi. Onderzoekere al leken gele brandsoep weg met ghusel he. Hamari janta je baanchit he. अब देखो भैया हो खाद के तुलन जानो भैया अरे भैया बड़का एनडीपी पेरा एक दाए सोशल मीडिया पे गिर गया रहा और सब कोई एक नाम धरी से मने दरा से था ढेर आदमी के ऐसे बोले है बैतलांदेश के बकड़ा बाची ही करे अब देखो हो खाड़ 12 दिन से कुछ ना सुना रहा अब हो खाड़ के भी अब मुआ कूल ले बोले दे मांग नो सब तक वे पीना बोले आदमी न जाने है कि हम लोग पीना करी लगा लूज फॉर हुकिंग 50% जो मा लंस दिनान तू तो कहने बतीकन फॉल्कंस रोनाल्ड हुखार जो फक बोंस ले इधर है बोले हैगा दैट मैन नीड नॉट रेड फॉल के है स्टिल सिक आफ्टर फ्राग एंड आफ्टर रेगिंग नीड वे द लंस दिनान पीनारन इन हेड लंग भैया मत तो हूं तो बड़का एनडीपी बाटे और तो हूं तो बाटे रेगिंग के बड़कवा और अपने आम के बोलिए सा एफ सा इना कुंद्रे दे मांग नो साबी तक वे पीनावन अपी दे ये नामे ना बैठल भैया तब बहरे सब जरूर अप चिरैया गाना गाई दन कई क निमान निनार हेड फॉल से कई क नार व्हाट से विल डून दिस व्हाट एर मेट ओंस गबेर द पॉलिटिक हिव दा निस मे ते मेकन अस मा सिक सेल्फ रेकन से हु हार्ड बोली से और ओही के पड़ते के आदमी तो आज बैठल है अब देख ओही के बोले हैगा का बोले हु हार्ड ई औत पूरा पुराना एनडीपीर parlementariër gaan, hoewel president Jennifer Simon aangeeft dat er momenteel geen financiële ruimte is om een hogere loonsverhoging dan 15% toe te kennen voor de landsmensen, landsdienaren. तेई बोले उना देखे हम लोग के तरह पीना करेला बोले इनो मान लेखवास मा दिनो अभी यंग ऐ तक अनो मुस यंग दिस एक स्केल द प्रेसिडेंट नीट ऐ वन से इव रोमल ओवर गनोमन दिस डूट हर बेस्ट ऑल दिस अ फक पोस्ट लेदर जाने गटाई काट के तेल लगा दे कि ना पीरा तो अपो के ना दे से संतोखी के देश बोले तू रोमल ओवर ले है मैं जो समय पे फिर यहाँ पे एक ही ओवर ले रहा तब पहुंचे रहा भैया खाली सो ना ओवर ले रहा का भैया तो द रेगिंग फक बेविंग सेन ओवर इन कॉमन ओमर gemengde werkgroep in te stellen bestaande uit 8 vertegenwoordigers के बारे में तो हमारी जनता हुखार्ड के बाद चित्रा सुरीनाम के बारे में अब देखो भैया जाए लगो सुपरमार्केट सुरीनाम में
चार आदमी अपन मुंह तोप के भैया मास्कर पहन के घुसल है, घुसल है वेस्टर्न फन सुरीनाम और बोले एगो वाख्तर के पकड़ के रात के सोमवार के और मंगल के रात के चार गो मास्कर पहन के ऊपर ऊपर मिस्टर करके हाथ गोड़ बांध के सुताए रहा भाई और जाए के दुकनिया में वो उनिंग एंड सुपर मार्क एंड पान में जाए के घुस गए हैं। द पुलिस तरफ द वक्त लातर फर्स्ट कबोन ऑन द अख्तर बालकोन में होके बांध दे रहा। चार बजे सवेरे के बात है और बोलेगा तुम सुपर मार्क ऐ खाना शोंग से एक बैठ पुलिस ब्यूरो निकेरी मेल तो निकेरी के बात है फरक्लार करे के वक्त में हिलप हाथ हो रहा रूपर ने फरमूड दर इस एरस्ट का नहांत वास फोलकर द फरक्लारिंग फन वक्त रहा द फिर मान एंड हेम एक बजे रात के फर्रास करिस ओवर मिस्टर करिसे फोर्सियर दाना राम एंड ड्रोंगन फिया द ऑनस्टैंड ओपनिंग द वोनिंग बिनन अब सुख ना द वार द फॉलो स्पिलन और बताए गए है सुपर मार्क वर्ड gebruikt, werd doorzocht de eigenaar en zijn gezin bevinden zich momenteel allemaal in Paramaribo. Bolle, het is vooralsnog onbekend wat de daders hebben meegenomen. Op een keer die rivier naar het pand en verlieten ze zijn locatie naar dezelfde route Suriname. Toen je maand hebben, ja, wacht daar week een pakkerke banker deze gaan. Je maand heb deko, 10 milake pakkerse Kashmir straat mee in val van de woning. Ja, wat eigenlijk hega Cuba ke oude tegen onder wie tuigo Cubaanse. Op maar और एगो एडमिशन नाम के 8 तारीख सितंबर के आनखौद कैसे का कश्मीर स्थान परमारीबो में बोले द एक्सी वेट आउटफोर द मीडि वर्कर्स सिपाही के ते पायरा अंडरस्टैंडिंग फॉर एन रीजन एन रीजन बेस्टन टीम परमारीबो के बतावे गए फरमुडलग स्लाक्टऑफर फन इज अ मेंसा हैंडल करतरान ए मेंसन स्मोकल करतरान। Tijdens de inval werden meerdere slachtoffers aangetroffen. Zij zijn voor opvang en verdere begeleiding overgebracht naar de shelter van de afdeling. Tipje waren met ons tot de ICBTA. Hem zo chitelijke hem ego orgiet sunaide. Toen vier hem aanjaingen. और वो कौन सी गीत है हमारे यारे यारो हमारी जनता दारू पी के डांस के बारे में

तो दोस्तों हम आ गए हैं और कुछ हॉट लीच गाना आज हम आप लोग को सुनाएंगे। घड़ी की ओर देखा जाए तो हो गया अख मुनितन ओवर जेवा हो चुका है, अख मुनित ओवर हो चुका है। तो दोस्तों आज हम आप लोग को सोका चटनी भी कुछ सुनाएंगे, कुछ हॉट डांस नंबर भी सुनाएंगे, तो आप लोग जरूर सुनते रहना। अगर आपको गीत मांगना है, गाना मांगना है तो आप लोग मांग सकते हैं। तो पहला गीत हम चला दे है और वो है माँ रईक छोटू के लिए, जो बहुत करीब रेडियो के करीब बैठकर और सुन रहे हैं। बिन कोर्ट इस यार खमेंस अल्फाल्स खफेलिसिटी माँ रईक, और यहाँ से तुम्हारे मांगा हुआ गीत हम चलाते हैं और वो है ख्वाब देखा। तो ये गीत आप सबके लिए भी है।

Dostoe, dit was een hot one van Radio Vahon. तो इस गीत को हमने चला दिया है माँ रई के छोटू के लिए. अगर आप भी एक यानी कि गीत मांगना चाहते हैं तो आप भी तार कर सकते हैं 07 तक पर. हम चलते हैं अगला जोन की ओर, और अगला जोन भी एक स्पेशल चटनी जो का मिक्स है. आप लोग को नाचना पड़ेगा.

En dat was een shuka shuka shuka chitty zong. और दोस्तों और आगे को हम चलते हैं बढ़ाते हैं अपना जोंग को तो घड़ी को और देखा जाए तो आज है फ्राइडे शुक्रवार ही 11 तारीख सितंबर हो चुका है एंड 18 मिनटन ओवर ओवर ओवर ओवर सेव हो गया है अगर भी आपको कोई गीत मांगना है तो मांग कर से रीता जी के लिए हम चलाते हैं वो भी एक एक सॉन्ग है जो को फिर से नाचना पड़ेगा एंड ओनली द हॉट वन बाय रेडियो आम बाय रेडियो फॉर हॉन

और ये भी एक हॉट सॉन्ग है, हॉट सॉन्ग है। और जो वीकेंड है तो नाचना पड़ेगा रीता जी के लिए, इस सॉन्ग को हमने चला ही दिया है। इसके बाद हम और आते हैं एक और चटनी मेघा सॉन्ग लेकर, और ये भी नाचने का है, चटनी मेका बै डीजे सॉन्ग है।

डीजे चटनी सॉन्ग। तो दोस्तों तार आम भी कर सकते हैं और ये गीत को मांग कर सकते हैं, गीत को मांग कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर 07 3620 2070 तक तार किया है योहानिस राम दत्त बंसीधर ने। और योहानिस राम दत्त बंसीधर भैया इतना सुग्गा आदमी है कि ओके पीछे कोई पड़ गया है तो भाई तेरी उमरिया देख के किसी के पीछे पड़ना याने कि नहीं गोड़ अपने आप कट जाएंगे। तो भैया योहानिस राम दत्त बंसीधर एक जगदीप सिंह का गीत को मांग किया है और बहुत प्यार से उससे गुजारिश करता है इस गीत को ठीक से सुनो तब आगे को कदम रखो। फोर द हेयर योहानिस राम दत्त बंसीधर है।

किया तुमने, तो हमारा भैया योहानस रामदत्त कह रहा है, बंसीधर जब हमसे तू प्यार कर ले तो तू काम पियो भितरे तेरी दूर रहो। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं। अब देखा जाए 5 मिनट ओवर हाल्फ हो चुका है। शुक्रवार क्या रात्रि का शाम का प्रोग्राम है। आज है फ्राइडे 11 सितंबर 5 मिनट ओवर हाल्फ। हम एक गीत को भी लेकर चलते हैं और ये भी एक हॉट वन है दोस्तों, हॉट वन है। और यानी कि हॉट वन सॉन्ग हम चलाते हैं, आप लोग जरूर सुनना। वही खान बिन कोर्ट नाम लाइक ओ बरेक बार से ऑफ वेट्स ऑफ मेंसे द कुंती अ नंबर aanvragen gewoon op de wets of aan radio van hun binnenkort krijgt u de nummer van ons। तो हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर।

0: और क्या हुआ तेरा बांदा नहीं खुदी सी वत काली की रीमेक सॉन्ग जो प्रभत पंचू ने गाकर आपको सुना दिया है। तो फ्राइडे नाइट वीकेंड में से हमेशा फेस्ट फेस्ट एंड फेस्ट शुक्रवार की शाम का प्रोग्राम है 11 सितंबर का 9:43 uur हो गया है। तो कुछ हॉट वन हम चलाएंगे 8 बजे तक। आप हितार करके गीत को मांग कर सकते हैं और हमारा नंबर है 0732 तक पे। इस वक्त हम लाइव है, हम चलते हैं अगला गीत की ओर और अगला गीत है बॉलीवुड पार्टी सॉन्ग।
1: हाय हाय हाय हाय हाय

और एंड्री गौ सो हाँ के बाद पीएम जैसे गौ सो ना जेलीग्राम।

और आगे भी यही शोर, पीछे भी, पीछे पीछे यही शोर होता है, और इस पूरी दुनिया में शोर है द बेस्ट रेडियो स्टेशन ऑन द वर्ल्ड एंड दैट इज रेडियो वाहन और द हॉट वन।

और प्रेम की नैया है और राम के भरोसे। दोस्तों कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे और प्रेम की नैया के बाद हम क्या लेकर आएंगे, बस सुनते रहो। फुल हॉट वन, फुल हॉट वन।

और मुन्ना मुन्ना मुन्ना मुन्ना गोरा रंगड़ी की और दीवाना हो गया हमारी दोस्तों। और हम चलते हैं रिमेक सॉन्ग और रिमेक सॉन्ग की ओर हम चलते हैं फुल डांस एंड हॉट वन।

ओहो, फुल रीमिक सॉन्ग आज हम लोग को आपको हम सुनाएंगे, एक और हो जाए।

0: mixed by DJ Tonmoy.
1: एंड दोस्तों आज हम रिवेक्स के मोड में हैं और जरेगेस के मोड में हैं, तो आपको हम सिर्फ रिमेक्स ही रिमेक्स आपको सुनाएंगे हमारे यारो। उसके बाद में हम चलते हैं एक और जोन की ओर, आओ सुना जाए ये क्या है।

और तुअनारी और कौन है खिलाड़ी, ये कौन सा सॉन्ग है, रीमिक्स सॉन्ग है जो रेडियो फोन के माध्यम से आप लोग को हमारे झुमाते हैं, नचाते हैं, और सुना जाए।

En beste luisteraar, Aantje Remix के मोड में है, आज Remix के मोड में है, तो आपको आज छुमाएंगे, नचाएंगे, सजाएंगे, जानी है हमारा नाम।

और छोड़ दिए हमने सारी दुनिया तेरे लिए है, और उसके बाद हम चलते हैं और आगे को अपना फुल रिमिक्स सॉन्ग लेकर हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं, आज रिमिक्स के मूड में हम हैं और रिमिक्स के मूड में हैं, तो हम क्या लेकर आते हैं, आओ सुना जाए।

और विजाओं ही विजाओं, और देखा जाए तो आज हम आप लोग को कुछ रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे, और कुछ शायरी आज नहीं होगा लेकिन सिर्फ सिर्फ रिमिक्स हॉटवॉन। नाचने के मूड में हो तो आप नाच सकते हैं, झूम सकते हैं हमारे यारों।

0: mahali d dj saran dot in dj saran dot in
1: hum kisi dusre ki amanat hai hum kisi dusre ki amanat hai
2: hey tum sirf meri ho aur kisi ki nahi ho sakti aur kisi ki nahi ho sakti hum dono ke beech agar koi aaya to samjho wo mar gaya
3: हाँ और समझो हम दोनों के प्यार के बीच में कोई आया तो वो समझो कि वो मर गया है।

और जीना दुश्वार हो गया है। तो आज रिमिक्स के मूड में है मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हैं आज हम रिमिक्स के मूड में हैं। तो हम फिर एक रिमिक्स सॉन्ग के ओर हम जाते, तो हम चलते हैं एक सॉन्ग के ओर।

0: और आज हम आप लोग को रीमेक सॉन्ग सुनाते हैं हमारे यारो। और रीमेक सॉन्ग में बहुत ही मजा है हमारे सुनने
1: वाले। हैव ऑस गेफंडन, लेट ऑस नॉइट मे गान। वाहोम हिंदुस्तानी रेडियो।

और दोस्तों अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, अगर सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो हम चलते हैं ओंकारा की ओर।

और हुंकारा रणबीर कपूर वनीनी कपूर, जिसमें काम किया है दोस्तों जॉनी है हमारा नाम। और आज हम आप लोग के कुछ नए और पुराने गीतों की भान प्रोग्राम चलाएंगे। हम जाते हैं उदित नारायण अलका याग्निक की ओर दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

और सांसू का चलना, और सलमान खान, करिश्मा कपूर, उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो दोस्तों। और आगे चला जाए तो कहते हैं, तुमसे मिलके दिल का जो हाल किया करे। इस फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन ने काम किया है और मूवी का नाम है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ ना।

और तुमसे मिलके दिल का हाल क्या करूं। दोस्तों हम चलते हैं अगला गाना की ओर। यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएंगे। इस फिल्म में सोनू देओल करिश्मा कपूर ने काम किया है और अलका विनोद फिल्म और ये है अलका याग्निक विनोद राठौड़ इस गीत को गाया है और मूवी का नाम है काश एंड क्रेडिट्स। सलमान खान सनी देओल में काम किया है। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

और यारा के बाद में हम और आगे को चलते ही तो हमारे यारो हम एक गीत की ओर और बढ़ते हैं। अभी हम आ जाएंगे अलका यांग्निक और अभिजीत का ये सॉन्ग है।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहम के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 97.35 तक 20 तक 7 फेटा फाहम हिंदुस्तानी रेडियो।

कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तू धरती पे चाहे यहां भी रहोगे, चाहे श्री नाम में रहोगे या जहां भी रहोगे, तेरे धड़कन से पहचानूंगा अलका याग्निक कुमार शानू का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग थे। और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

तो दोस्तों यार तुम बदल ना जाना, मौसम की तरह मूवी के नाम था। तलाश के बाद में हम जाते हैं, मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 नेकत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आलका याग्निक का ये जोंग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानू राजेंद्र कुमार का ये सॉन्ग है, फिल्म है, और जिसमें मूवी का नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इज ओल्ड इज गोल्ड, अमन जोंग का ये गीत है। पद्मश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरबानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ ही साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिस नई खंत क्रिया यारा नई खंत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही नार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहम के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 97.3 FM 6.20 FM। फाहम हिंदुस्तानी रेडियो।

दीवाना हुआ पागल, नॉक स्टेज द लवली सॉन्ग मेंशन। तो हम जाते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारों।

सलमान ए रानी मुखर्जी। इन क्यूकनहॉफ

और सर से वो सर की तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते हैं गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुद गर्ज, मूवी का नाम है खुद गर्ज से पर हिट सॉन्ग मई से मीना से नशा की दिल कैनेडी से बैल है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूं तेरा नाम।

करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस, और वह माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्रा।

लग जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

जो तुमको पसंद होगा वही गीत जॉनी आपको सुनाएंगे। हमारे यारों, ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग है, जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे, आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे। और निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा, मूवी का नाम है नागिन।

और मेरा दिल ये और क्या होता है मेरे दिल को पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोंग है हमारे यारों, हरियाली रास्ता का ये जोंग है।

और अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं कि इश्त में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों इश्त में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है। मुझे इतना ज़्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

और इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहाँ तक। और वो चलते हैं तदलत महमूद का और नाइटिगेल लता जी का सॉन्ग थे। आशा परीक सुनील लतीश में काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आंब की आंखों में क्या है आंब की आंखों में क्या है ओ तो आंब को पता है कि किसके सपने आंब देख रहे हैं।

और दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है। साथ ही साथ हम चल रहे कि पन्ना की तमन्ना में नजगे लचा जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिंह ने तमन्नी इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या, और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

कौन मिल जाता है, हीरा मिल जाता है, नैतिकी लता जी का ये जोंग थे। उसके बाद पे हम चलते हैं मौफी के नाम असली नकली निकती होन द्रियन संस्था का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमात श्री मोहम्मद रफी और नैतिकी लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जय स्कन का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसरत जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

जोड़ से बांध लिया है मौफी के नाम से। असली नकली के बांध में हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाशीर मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

और अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं। और ओल्ड एंड गोल्ड के बांध में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में, बस प्यार ही प्यार, पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है।

प्यार ही प्यार मूवी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मूवी का ये सॉन्ग है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।

0: मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो। हम चलते हैं आओ आगे।
1: जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जो देनहाग शहर से प्रसारित हो रहा है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और क्या ख्याल है फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म होली आई रे में से निकाले नेगेटिव सही फिल्म का ये गीत है मैं तो मुकेश इस तरह से

मैं थी मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमने प्लेयर में तीन गाने रखे हैं, जी हाँ तीन गाने, चार गाने रखे हैं। अब सोचता ये हूँ कहाँ शुरू करूँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत आप सुनिए, फिल्म दो बदन में से है।

नैनों में बदरा छाए, ये गीत हमने निकाले हैं मदन मोहन के साज पर मेरा साया में से, और हमने पेश की ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। एक गीत हमने और प्लेयर में रखे हैं, ये सुबह के लाली के जिक्र कर रहा है। अब ये मुझे पता नहीं है कि सुबह ये गीत चलाना चाहिए या शाम को या दोपहर को या रात को, ये पता नहीं है, क्योंकि ये गीत मेरे दिमाग से निकल गया। इसका धुन कैसे है, बात कैसी है, आशा जी एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना रहे हैं। फिल्म है अभी तो जीले में से निकाल रहे हैं निकती सैफ न सैफ। तो चलो सुनते हैं, चलो एक बार मैं भी बेवक्त के शहनाई बजा दूँ।

तू लाली है सवेरे वाली, फिल्म है अभी तो जी ले, नेगती सैफन सैफन तक आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए। दरअसल में ये गीत हमने पहली बार चलाया, पता नहीं धुप्पल में कैसे मिल गया। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है जगमोहन बख्शी और सपन सेन गुप्ता। मुझे इस फिल्म के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब हमने सुन लिए, देख लिए और जान लिए, तो हम ढूँढेंगे ये फिल्म कि कैसा फिल्म है ये। अभी तो जी लेने नेगती सैफन सैफन तक ये गीत हम आपको सुनाए ओ प्रोफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

है इसी में प्यार की आबरू, मदन मोहन के साज पर लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए। मैं भी एक बेगीत बैठ के बहुत दिनों बाद सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इतने खो गए थे इस गीत में कि हमने भूल गए ये गीत भी चून करने को कि ये गीत कैसा है। चलिए हम आपको सुनाते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसा गीत है।

बस महालक्ष्मी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत ओ फुरफा हो हिंदुस्तानी।

मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मेहंदी लगी तेरे हाथ और ये नहीं नहीं मेहंदी लगी मेरे हाथ, हाँ मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962 का ये फिल्म लिखी थी तुई सस्त का ये फिल्म है और हमने ये गीत पेश किए आपके लिए सभी श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये भी एक लंबा चौड़ा गीत है। जी हाँ चलो सुनते हवा हवाई।

हवा हवाई फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया और गाने वाली थी कविता कृष्णमूर्ति जी। तो ये तो आजकल की कैबरे है ना, जो आजकल चल रहा है उससे पहले की कैबरी थी ये। चलिए हम उससे पहले की यानी सिजदयार शस्त्र का गीत आपको सुनाते हैं और देख रहे हैं कि गंगा जमुना में किस तरह से वैजयंती माला ये गीत एक्ट की है और अपनी नृत्य पेश की है।

वाह क्या बात है, गंगा जमुना में से हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत और हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये उस ज़माने के गीत था यानी सस्त ख्यार का गंगा जमुना में से निकाले हैं नौशाद अली के साज पर। चलिए उसी फिल्म में से एक बार हम आपको सुनाते हैं जी नहीं, ये मदर इंडिया का है उन दिनों की।

वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे धीरे हाँ करे शमशाद बेगम, और साथ ही नौशाद अली के साज पर ये गीत चला। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम निगेटिव सेव ने फैफ तक ये गीत और फिल्म मदर इंडिया में से निकाले। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मदर इंडिया पहली फिल्म थी थिएटर द पारल में निगेटिव सेव ने फैफ तक में जब चला बॉलीवुड का, उससे पहले नॉन हिंदी फिल्म चला था ये मुझे नहीं मालूम, कोई अमेरिकन फिल्म या फ्रांस फिल्म था। बहरहाल हिंदी फिल्म पहला फिल्म था मदर इंडिया जो दपार में चलाया गया सूरीनाम देश में नेगन तीन सेफ तक में।

दगा वही वही ये शानदार गीत चला ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की इस तरह से। लोग पूछ रहे थे गंगा जी आपने कितनी सीफ ने फाइफ तक की बात कर रहे थे यात्रा दपाल का पहला फिल्म, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने हिंदी फिल्म सबसे पहले कभी कहाँ देखा है, तो हमने पहला फिल्म देखा है 1983 साल में देखे हैं और वो था फिल्म आवारा, और उसके बाद टेटन में देखे हैं तो स्वर्धन उफुम ब्रक्सर क्या नाम है लुक्सोर में देखे हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 टेटन में देखे हैं, उससे पहले रेक रियासी साल में देखे थे। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो इस तरह से है।

मेरी भीगी भीगी सी एवरग्रीन किशोर कुमार जी आपको सुनाए और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो हो वे इंटरनल पर आप चुने हैं, जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। क्या ख्याल अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से है आ रहा है। धर्मात्मा 1975 ने हिंदी फिल्म सही फिल्म।

फिल्म धर्मात्मा में से निकाले हैं मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और कंचन जी निकती फैफ से ही का ये गीत हम आपको सुना है शाम के इस तरह से कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, लता जी है रफ़ी साहब की आवाज़ में साथ साथ दे रहे हैं।

फिल्म वारिस में से आरती बर्मन के साथ पर रफ़ी साहब और लता जी, इन दोनों की आवाज़ में हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और लीजिए एक बार फिर, जी हाँ,

झूम के गायों आज मेरे दिल। जी हाँ, फिल्म देखते हैं, कौन सा फिल्म था तो अच्छा दिखा तो नहीं है, बहरहाल इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं, बहरहाल गीत हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, इसका फिल्म तो मालूम है ज़रूर, फिल्म रोटी। फिल्म रोटी में से निकाल रहे हैं निगतिन फिरन सैफन तक, 1974 का ये गीत इस तरह से है, एवरग्रीन किशोर कुमार।

नाच मेरी बुलबुल बुल, जी हाँ पैसा मिलेगा, एवरग्रीन किशोर कुमार। लेकिन फिर से फिर तक ये फिल्म रोटी में से निकालने हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। तो अगला गीत है ये फिल्म गाई तो आपने अवश्य देखे होंगे, एस दे बर्मन के साज है और लता जी की आवाज़ में ये सेमी क्लासिकल सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

प्रिया तुसे नैना लागी रे, लता जी की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनाए हैं एस डी बर्मन के साज पर, और था फिल्म कायद में से निकाल कर। तो लीजिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, बस आपकी जानी पहचानी गीत है। जी हाँ, एक बार फिल्म आदमी में से निकाले हैं लता जी की आवाज़ में।

फिल्म आदमी में से नौशाद अली के साज पर लता जी की आवाज़ में हमने पेश की कारी बदरिया, और लता जी के बाद हम पेश करते हैं एक बार फिर आशा जी को, और आशा जी कह रही है चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो चलो सुनते हैं और जानते हैं कि चेहरे पे कितनी खुशी आती है।